0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों, और इट हैपेंस के साथ हमारा आपके साथ जो प्यार है, जो इस प्यार की गहराई है वो और भी आगे चल रही है। देखिए चैलेंजेस जो हैं वो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब चैलेंज नहीं होंगे तो आपकी लाइफ बोरिंग से नहीं हो जाएगी। हाँ, इसीलिए आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो वो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है आपकी लाइफ में, और लाइफ में आपको बोर नहीं होने देता है। एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता है और आप यही सोचते रहते हैं कि भाई इस चैलेंज को हम कोप कैसे करें। लेकिन उस चैलेंज से निकलना भाई इसकी भी एक खासियत है, ये आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। क्योंकि हर चैलेंज से जब आप ओवरकम करते हैं तो बेसिकली आप एक नए जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ओवरकम करते हैं, एक नए एक्सपीरियंस को आप लेकर लाइफ में चलते हैं, उसको एडअप करते हैं, है ना। तो चलिए बस इसी बात पर कि हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे, इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस, और एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस में कई खूबसूरत और बेहतरीन गाने। सो कैसी है ये मॉर्निंग भाई आप सबके लिए, कैसी है ये सुबह और कैसी गुजर रही है? वैसे सुबह की तैयारी तो अच्छे से की होगी ना आपने? जहाँ अच्छे से मतलब भाई, जब तक मॉर्निंग की तैयारी बेस्ट ना हो उस मॉर्निंग का मजा ही नहीं आता है ना। और बेस्ट तैयारी कैसे होती है कि हम सुबह सुबह अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, है ना। देखिए सुबह की शुरुआत अगर खुद को फिट रखने से होती है तो यकीनन आप लाइफ के लिए पॉजिटिव होते हैं। लाइफ में कौन बंदा पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये आप उसके फिटनेस एक्सपीरियंस को देखकर जान सकते हैं। जो बंदा लाइफ को लेकर आशावादी है, पॉजिटिव है, वो हमेशा अपनी फिटनेस का ख्याल रखेगा क्योंकि उसको पता है कि भैया शरीर है तो सब कुछ है। और जो अपनी डेली रूटीन को लेकर भी नेगेटिव ही सोचता है वो बंदा कभी भी अपनी बॉडी फिटनेस पर ध्यान नहीं देगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा और वो उसको लगेगा कि भाई आज जी लिए तो जी लिए, कल की कल देखेंगे, या वो बाकी लोगों पर डिपेंड रहेगा कि बीमार हो गए तो इतने लोग हैं तो, है ना। तो बस आप, मुझे लगता है कि पॉजिटिव है लाइफ को लेकर और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो इसका ख्याल रखिए। और चलिए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ, अभी इंजॉय करते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

इट हैपेंस, इसी सफर को आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रसवानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ मेरी कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें इस सुबह की हो रही हैं। यू नो, लाइफ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन टीचर है हम सबकी जिंदगी की। अब आप कहेंगे कि क्यों? हाँ तो भाई, इस क्यों का जवाब है ना मेरे पास, क्योंकि लाइफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए रिपीट होती रहती हैं। एक बार आप उससे निकल जाते हैं, फिर वैसी प्रॉब्लम या वैसी सिचुएशन जो आपको परेशान करने वाली होती है आपके आगे खड़ी हो जाती है ना। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप लाइफ का वो लेसन जो लाइफ आपको देना चाह रही है आप नहीं ले लेते हैं, तब तक वो जो टीचिंग है उसकी या वो जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में रिक्रिएट होती रहती है। आप बार बार उससे निकलते हैं, आप बार बार उसको लेकर परेशान होते हैं और वो अगेन आपकी लाइफ में रिक्रिएट हो जाती है। जैसे कभी कभी जिंदगी किसी एक बंदे से आपको दूर करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि यार इस टाइप के लोग ना जिंदगी में धोखा देते हैं, लेकिन बार बार आप उन पे भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा कि फिर वो भरोसा जो है वो बार बार टूटता है, और तब तक टूटता है जब तक आप उस तरह के बंदों को पहचान नहीं लेते। हाँ, तो ये जो तरीका है, ये जिंदगी का तरीका है आपको समझाने का, दर्द के साथ जो समझ आती है ना बॉस, वो भी बड़ी दमदार होती है। और उसी समझ के नाम फिलहाल ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर।

हैपेंस। जी हाँ, इट हैपेंस। सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। अच्छा, जिंदगी को लेकर ना मुझे एक बात बड़ी बेहतरीन लगती है। क्या? देखिए, स्कूल और जिंदगी दोनों ही सिखाते हैं आपको, है ना। स्कूल में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और जिंदगी में भी आप मतलब हर कदम पे सीखते चलते हैं। मुझे लगता है इसीलिए किसी ने ये कहा है कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती या सीखना कभी बंद नहीं होता है। ये बड़ा सोच के कहा है क्योंकि उसको पता था कि यार स्कूल में सीख लिया वो तो एक एज खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जिंदगी है ना, वो आपको सारी जिंदगी सिखाएगी। इसीलिए किसी ने कहा है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। वैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि जो लाइफ के लेसन हैं या स्कूल के लेसन हैं, इनमें एक बड़ी बढ़िया बात छुपी। अब देखिए, स्कूल के लेसन जो हैं या स्कूल की टीचिंग जो है आपको नहीं पसंद आ रही, आप उसे स्किप कर सकते हैं। भाई बंक कर दिया स्कूल, उस दिन नहीं गए, है ना, या नहीं पढ़ा ध्यान से। लेकिन आपके जो जिंदगी के लेसन्स हैं आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते। कान पकड़ के जिंदगी आपको वो लेसन समझा के ही मानेगी, है ना। तो इसीलिए जिंदगी को बड़ा ही हसीन कहा जाता है शायद, और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी से बड़ा टीचर हमारा और कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

एंट्स क्वींसलैंड या फायर एंट्स QLD खोजो या 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर

0: what you love. Love.
1: APJ अब्दुल कलाम साहब जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं और उनकी जिंदगी और उनके जो लेसन्स हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो APJ अब्दुल कलाम जी का एक थॉट जो है वो लाइफ चेंजिंग थॉट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसे आपके साथ इस वक्त बांटूंगी। मुझे एकदम से याद आया आज सर ने कहा था, APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी को सल्यूट करते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी, आपका जो काम है, आपका जो कर्मा है, उसे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको किसी को भी सल्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करते हैं, उसके साथ आप गद्दारी करते हैं या उसमें आप कुछ गड़बड़ करते हैं, तो फिर आपको जिंदगी भर सबको सल्यूट करना पड़ता है। सो चॉइस आपकी है कि आप अपना काम अच्छे से करते हैं या फिर भाई आपको सबको सैल्यूट करने में मजा आता है। तो बस जिंदगी हमारी है, चॉइस हमारी है ना। फिलहाल एक और ट्रैक सुननी है हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

ये था आज दोस्तों एक बार फिर से इट हैपेंस पर सताक्षी का एक और बेहतरीन और प्यार भरा साथ आप सबके साथ। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि भाई आपने तो इस वक्त में अपने मॉर्निंग से जो वक्त निकाला उसमें मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दिया। आई रियली होप कि आपके इस वक्त की कीमत को मैंने भी समझा हो और आज के इस शो से आपने भी जरूर कुछ सीखा हो और आज का ये शो आपको अच्छा लगा हो। सो चलिए आज के इस शो को यहीं पर इट हैपेंस को यहीं पर वाइंड अप करते हुए इस वादे के साथ कि कल की मॉर्निंग होगी आपके साथ एक और मुलाकात, लेते हैं आज के सफर से इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए। देखो अज मैं सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड के किसी एक सितारे बारे क्यों ना गल कर लिए है ना। तो अजकल जिड़ी फिल्म की सब तो ज्यादा चर्चा है, हालांकि वह फिल्म रिलीज दिवाली ते होनी है पर उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हैगी है रामायण की गल कर रही हाँ मैं। तो गल क्यों ना उस लीड एक्टर की कर लिए रणबीर कपूर की। बहुत शानदार एक्टर आ। तो रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण विच भगवान राम का किरदार निभाने नजर आएंगे। इस रोल नू लेके उन्होंने फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार अजिहा होगा जब रणबीर किसी पौराणिक किरदार दे विच नजर आएंगे परदे ते दिखणगे। तो उन्होंने बारे गल करते हैं पर पहले गीत सुन लो तुसीं।

0: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए रणवीर की जो गल करिए ना तो हर तरह का किरदार निभा चुके ने रणवीर अपने हुण तक के करियर विच ना रणवीर ने रोमांटिक हीरो तो लैके जुनूनी रॉक स्टार किरदार ते मासूम किरदार ते नैगेटिव शेड वाले किरदार हर तरह के वक् वक् रोल्स ने जिहड़े निभा ले हैगे ने ते इस मौके मैं सोचा कि अज जदों उन्हां दी गल कर ही रहे हां तां उन्हां दीआं कुछ अजिहीआं फिल्मां बारे गल करते हैगीआं जिन्हां ने उन्हां नूं इक वक्खरी पहचान दवाई हैगी आ। शुरुआत तो शुरुआत शुरू करांगे ना, शुरुआत मतलब कि जदों उन्हां ने करियर की शुरुआत की सी उत्से तो ही गल करांगे एक एक करके। तां हुण तुसीं आए करो सोचो कि केड़ी सी डेब्यू मूवी रणबीर कपूर की, फटाफट दे नाल सोचना शुरू करो। मैं हुणे वापस आनी उन्हां समां इंजॉय करो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: शूटर कालो नूं पहले गाने तो ही पहचान मिल गई सी, बच्चे बच्चे नूं पता लग गया सी कि पंजाब विच कोई शूटर कालो नाम का भी बंदा है।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसरों वाले हम तेजियार चे संदेश अलग दिन आज बने हुए हैं। ता देखो रणबीर कपूर ने डेब्यू किया सी, तुसी गैस लगा लिया होना बिल्कुल सही, और टावल वाला सीन भी याद आ गया होना सावरिया दे नाल। ता रणबीर कपूर ने ना साल 2027 विच डेब्यू किया सी संची लीला बंसाली दी फिल्म सीगी जी मैं हुणे दसी सावरिया। बॉलीवुड विच कदम रखिया इस मूवी दे नाल, ता फिल्म ना बॉक्स ऑफिस ते खास कमाल नहीं कर पाई, पर रणबीर दे चॉकलेटी ते मासूम अंदाज ने दर्शकां दा ध्यान जरूर खिंच लिया सी। इस बाद एक्टर ने लगातार वख-वख तरह दे किरदारां दे नाल खुद नूं साबित कीता ते हौले हौले उन्हां दा सीन स्क्रीन इमेज भी बदलदी ही गई। रणबीर कपूर दे करियर विच ना कुछ फिल्मां अजिहां रहियां हैगियां ने जिन्हां ने सिर्फ उन्हां दी फिल्मोग्राफी नहीं बदली बल्कि बतौर स्टार उन्हां दी पहचान नूं भी नवां रूप दित्ता है। रॉक स्टार ते जनून रॉक स्टार तों लैके एनिमल दे हिंसक ते जटिल किरदार तक रणबीर ने कई अलग रंग दिखाए ने सानूं।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers and आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: तू बेच दा गोलना सच्चों ना गल करिए कृष्ण तू गोलना बेच दा। तू ना टेंशन ले।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए हूं हूं पिकअप सिट की जो गल करिए एक्टिंग का हुनर तो दिखाया से इस सांवरिया तो बाद क्योंकि रणबीर की पहचान पिकअप सिट नाल मजबूत हुई सी। साल 2009 आई आयान मुखर्जी की इस फिल्म विच उन्होंने सिद्धार्थ यानी कि सिट का किरदार निभाया सी। फिल्म ने रणबीर नू सिर्फ रोमांटिक हीरो की इमेज तो अगे वधन का मौका दिता। इस दौर विच अजब प्रेम की गजब कहानी अते रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर वर्गियां फिल्मां भी उन्हां दी रेंज उसने दिखाई सी। बहुत शानदार फिल्मां सी हालांकि रॉकेट सिंह इन्नी नहीं चल सकी बट नो डाउट अच्छी एक अलग किरदार देखने मिलिया सी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करिए किसने गंभीर अभिनेता बनाया था, गंभीर अभिनेता बनाया देखो रॉक स्टार ने 2011 आई सी 2011 रॉक स्टार रणबीर के करियर का सब तो वड्डा मोड़ मनी जाती है। इम्तियाज अली की इस फिल्म विच उन्होंने जनार्दन जॉर्डन जाखड़ का किरदार निभाया। इस किरदार विच रणबीर ने ना रोमांस गुस्सा दर्द ते जुनून वर्गे कई इमोशंस नूं परदे ते उतारिया। फिल्म विच उन्हां दी एक्टिंग नूं खूब सराहाया गया ते उन्हां नूं फिल्म फेयर विच बेस्ट एक्टर दा अवार्ड मिलिया सी।
1: रंग कण

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। हुण गल करदे आ जिहड़ी सब तो ज्यादा यादगार मनी जाती है रणबीर कपूर की फिल्म, वो है जी संजू। संजू ने बदले बायोपिक स्टार वाली पहचान। 2018 आई थी राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू। संजू विच ना रणबीर ने एक्टर संजू दत्त का किरदार निभाया सी। ये उन्होंने करियर की एक होर वड्डी चुनौती सी क्योंकि उन्होंने सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि संजू दत्त की वक्-वक् उम्र और जिंदगी के कई दौर नूं पर्दे ते उतारिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से भी चंगा प्रदर्शन किया। रणबीर नू एक बार फिर फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है संजू के लिए।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे, जी हाँ कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपको मेरा इंतजार था। जी हाँ, क्योंकि मुझे तो आप लोगों का बहुत इंतजार था। मैं तो सोच ही रही थी कि बस कब प्रोग्राम शुरू हो, कब मैं अपने लिसनर से मिलूं, कब वो प्यारी प्यारी बातें शुरू हो और वो कब वो महफिल हम सजाएं। मतलब ये किसी महफिल से कम नहीं है, आई एम टेलिंग यू। जी हाँ, मतलब आप लोग काम करते हो, उसके बाद आप थक जाते हो और फिर उसके बाद हम आपके लिए ये स्ट्रेस मुक्त होने का प्रबंध करते हैं। जी हाँ, सो ये प्रोग्राम आपको एंटरटेन करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपको अप टू डेट भी रखता है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, जल्दी से आ जाइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि अब ये 3 घंटे की राइड बहुत ही सुहावनी होने वाली है। सो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा एक हेल्दी रिचुअल के साथ, एक ऐसा हेल्दी रिचुअल जो आपको हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, आप इन लंबी गहरी सांसों को ना ऐसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब आप ये लेते हो ना तो आपकी बॉडी रिजुविनेट फील करती है, नया नया फील करती है, मतलब रिसेट होकर जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। सो आइए सबसे पहले वही करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी प्रोग्राम की। आपको पता ही है प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है, बढ़िया से गाने, मजेदार से गाने, उनके बिना तो नहीं हो सकती। सो आइए जल्दी से और यहां पर शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को एक बढ़िया से गाने के साथ, जिसका नाम है ऊंचा लंबा कद। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि अच्छा, सो वेलकम का गाना प्ले करने वाली हूँ निव्या शर्मा। सबसे पहले बिल्कुल वही करने वाली हूँ, क्योंकि ये गाना आपको नचा में, आपको अच्छा फील कराने में, आपको वाइब कराने में काफी अच्छे से काम कर सकता है।

जी दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। तो जरा मौसम की, टेम्परेचर की, वेदर की बात कर ली जाए। वेल ऑफ कोर्स कर ली जाए। और यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा कि ठंडक बढ़ गई है मेरे दोस्त, ठंडक बढ़ गई है। जी हाँ, 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर अभी की बात की जाए तो 21.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 18.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे। और वहीं अगर बारिश की बात करें तो 20% चांसेस थे बारिश के, जो कि अगेन कुछ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी के चांसेस थे। इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, या नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। और ये है आज का हाल। कल की अगर बात करें, यानी कि वेडनेसडे एंड साथ में परसों की एंड थर्सडे की, तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर कल रहेगा विद 10% चांसेस ऑफ रेन। लेकिन बादल जो है वो आपको आसमान में दिखेंगे, और कितना आसमान क्लियर आपको नजर आएगा वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन बादल मुझे यहां पर दिख रहे हैं होते हुए कल, ऑल्दो बारिश मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ 10% चांसेस है, जो कि ना के बराबर है। वहीं अगर थर्सडे की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ एकदम चमकता हुआ, चमचमाता हुआ सूरज आपको मिलने वाला है, एंड नो चांसेस ऑफ बारिश। फिर से धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ेगी और फिर से बारिश आ जाएगी, उसको कंट्रोल कर देगी। जी हाँ, सो यही होने वाला है। रेडी रहिए इसके लिए। और ये है एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो गया है, मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है। और इससे पहले हम अपनी गपशप में लीन हो जाएं, आपको बता दें कि आप लोग अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में फरमाइश कर सकते हो। मतलब कोई गाना अगर आप चाहते हो रिकमेंड करना, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, तो आप सकते हो। इनफैक्ट अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करके उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, जी हाँ, सो आप वो भी कर सकते हो एंड वी आर गोना हेल्प यू विद दैट। सो ऑल यू नीड टू डू इज आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888-7107 01। आई रिपीट, +9182888-7107 01। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हमारे पास एक नया ग्रैंड मास्टर आ गया है, वो भी द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। जी हाँ, इससे पहले जो ग्रैंड मास्टर था उसकी उम्र जो थी वो 12 साल 4 महीने थी। जी हाँ, जो कि लिटरली यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है वो माना जाता था। लेकिन अब ये जो जगह है वो किसी और ने हासिल कर लिया, अब ये जो पद है वो किसी और ने हासिल कर लिया, बिकॉज बुद्धाना सिवनंदन जो है इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ever। जी हाँ, और वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर तो है ही, लेकिन वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी है, यंगेस्ट प्लेयर भी है जिन्होंने सबसे पहले एक ग्रैंड मास्टर को हराया। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 11 महीने 11 साल 4 महीने की उम्र है इस छोटी सी बच्ची की। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये ब्रिटेन में जो है वो रहती हैं, ऑल्दो इंडियन ओरिजिन की हैं। जी हाँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टैलेंट है इनमें ये अपने आप ही आया है, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या इनकी फैमिली में पहले कोई ऐसा है जो चेस खेलता है, जो चेस में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो जब उनकी फैमिली से पूछा गया तो उनकी फैमिली ने कहा कि नहीं, हमारी फैमिली में चेस में कोई भी ज्यादा इतना टैलेंटेड नहीं है, बट शी सरप्राइज्ड फैमिली। जी हाँ, लिटरली नॉट जस्ट फैमिली बट द नेशन। एंड यहां पर एक और बड़ी जबरदस्ती चीज ये है कि इस छोटी सी बच्ची ने चेस खेलना सीखा है 5 साल की उम्र में। जी हाँ, बैक इन 2020 जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, कोविड शुरू हुआ था, उस दौरान इस छोटी सी बच्ची ने शुरू किया था चेस खेलना, और फिर उसके बाद वो आज यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंच गई है सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में। आई मीन इमेजिन कि आप खुद सोचिए कि कितनी खतरनाक चीज है ये कि 11 साल 4 महीने की उम्र में आप एक ग्रैंड मास्टर को हरा रहे हो। और इससे पहले जो ये जगह थी वो थी अभिमन्यु मिश्रा की, जो कि 12 साल 4 महीने के थे। जी हाँ, और यहां पर उन्हें ये टाइटल मिला था यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का, लेकिन बुद्धाना सिवनंदन ने बता दिया है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो है वो और भी ज्यादा टैलेंटेड है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शी इज अ वुमेन ग्रैंड मास्टर, शी इज अ गर्ल ग्रैंड मास्टर, फीमेल मास्टर, विच इज क्वाइट यू नो सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी, बिकॉज आई मीन जब भी लड़कियां कुछ करती हैं, फीमेल्स कुछ करती हैं और खतरनाक करती हैं, तो और भी ज्यादा प्राउड फील होता है। बींग अ गर्ल आई थिंक दैट्स गिवन, राइट? सो या कॉन्ग्रेचुलेशन टू बुद्धाना सिवनंदन और उनकी फैमिली, और खासकर ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन के लिए वो खेलती हैं और ब्रिटिशर्स को वो रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन में पैदा हुई हैं, वहीं पली बड़ी हैं। और एक और चीज है, वो यंगेस्ट प्लेयर है अभी तक ब्रिटेन की हिस्ट्री में,

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਤਨਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मुझे एक चीज के बारे में बात करनी है एंड इट्स हाई टाइम हम इसके बारे में बात करें, और वो है कि जो हम जानवरों का इस्तेमाल करते हैं अपने मनोरंजन का। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस सिचुएशन, आई डोंट नो इफ यू आर, बट It's really not a good thing. जी हाँ, and why am I talking about it? Because अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा हादसा होने से बच गया है, और वो हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम इंसानों को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने इन बीस्ट को, ये जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा पावर जो है वो मास्टर किए हुए हैं, उनको हम टेम कर सकते हैं, उनसे हम वो चीजें करवा सकते हैं जो कि वो बेसिकली करना ना चाहे, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें टेम कर लिया है तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उनसे वो चीजें करवाने में कामयाब हो गए हैं। जी हाँ, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अबुल। जी हाँ, अबुल जो कि लिटरली स्पेन में एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में जो है वो भाग रहा था, वो वही वाली सिचुएशन थी जहां पर जो लोग हैं वो बुल को अपनी तरफ बुलाते हैं, क्लोथ दिखाते हैं एक, और वो वैसी वाली सिचुएशन में फिर वो उस तरफ को भागता है और फिर लोग जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, या जो भी व्यक्ति वो कर रहा होता है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, सो यही हुआ वहां पर जहां पर एक बुल फाइट हो रही थी, और वो वाली सिचुएशन भी थी वहां पर स्पेन में। इस प्रोग्राम के दौरान वो बुल अपना सारा काम छोड़ के, जो उसे करने के लिए कहा गया है, वो लोगों की तरफ भागने लगा, वो बाउंड्री की तरफ भागने लगा, एंड गेस व्हाट, वो बाउंड्री को क्रॉस भी कर गया। इट जस्ट दैट कि वहां पर एक और कॉन्क्रीट वॉल थी जो कि ऑडियंस और बुल के बीच में थी. सो बेसिकली एक कॉन्क्रीट वॉल थी जो कि ऑडियंस और उसके बीच थी, उसके बीच में एक गैलरी सी बनाई हुई थी और उसके बाद एक मेन बाउंड्री रखी हुई थी. सो बेसिकली वो जो बुल था वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके उस बीच वाली गैलरी में घुस गया और वो तो आप शुक्र मनाइए कि लिटरली एक कॉन्क्रीट वॉल जो है वो बुल और लोगों के बीच में यानी कि ऑडियंस के बीच में थी. अगर वो नहीं होती तो एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता, बहुत से लोग जख्मी हो सकते थे और किसी की जान भी जा सकती थी. नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टॉक हियर, वेल मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूं कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए. इट्स हाई टाइम हम ये चीजें छोड़ दें. आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट स्टॉप इट. मतलब ये कोई हम रोमन एरा में तो है नहीं या फिर 18th या 17th सेंचुरी में तो है नहीं कि हम ऐसी सी चीजों का इस्तेमाल करके हम अपना प्लेजर जो है वो ढूंढे. या देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी एंटरटेन विद. मतलब हम एंटरटेनमेंट ले सकते हैं बहुत सारी और चीजों से, उसके लिए हमें किसी जानवर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके करतब दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. डोंट यू थिंक? जी हाँ, इट्स हाई टाइम. मतलब वो जो ग्लैडिएटर्स वाली एरा थी, मुझे समझ आता है कि तब वो होता था बिकॉज तब और मनोरंजन नहीं होते थे. जी हाँ, लेकिन अब तो बहुत कुछ है. अगर आपको इतना ही तूफानी कुछ करना है तो किसी रोलर कोस्टर पर बैठ जाइए ना. वाई आर यू मेकिंग दीज एनिमल्स सफर? लाइक लिटरली आई थिंक इट्स हाई टाइम. और ये लिटरली स्पेन का जो हादसा है वो 20 सितंबर का है. जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि वो 1120 पाउंड का बुल था जिसकी उम्र जो है वो 6 साल बताई जा रही थी. एंड इट वाज अ फुल ग्रोन बुल. अगर वो कॉन्क्रीट वॉल नहीं होती तो इंसानों को पता चल जाता कि भाई हम जो सोचते हैं वो वैसा नहीं है, हम इनको टेम नहीं कर सकते. क्योंकि इनका दिमाग जब घूमेगा और इनको लगेगा कि ओ ये टाइनी पटूटी ह्यूमन बींग्स हमें कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मुझे लगता है कि ये जब ये सोचना शुरू कर दें उससे पहले हम ये सोच लें कि हमें इनसे वो सब चीजें नहीं करानी है जो कि लिटरली हमारी ही लिए गड़बड़ पैदा कर दे. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ किसी ने पूछा व्हाई आर माउंटेन्स फनी। जी हाँ, व्हाई आर माउंटेन्स फनी। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाई आर माउंटेन्स फनी। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। चलिए ठीक है, अगर सीधे और हिंदी में बताया जाए आपको या पूछा जाए आपसे, तो जो माउंटेन्स है, पहाड़, वो फनी क्यों है, वो हंसाने वाले क्यों है। जी हाँ, मतलब क्यों है वो फनी। जी हाँ, तो अब आपको मुझे जवाब देना है कि व्हाई आर माउंटेन्स फनी। सोचिए सोचिए सोचिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। बिकॉज दे आर हिल एरियाज, हिल एरियाज। जी हाँ, और हिल एरियाज तो वही होता है जो फनी होता है। सो दैट इज व्हाई माउंटेन्स आर फनी। तो कभी आप पहाड़ों की तरफ जाओगे ना, तो आपको मेरा ये जोक जरूर याद आना चाहिए, और आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि निव्या क्या पकाऊ जोक मारा है तुमने। जी हाँ, सो कल ही की बात है, बहुत ही अच्छे से मैं सोशल मीडिया चला रही थी, और वहां पर मेरे सामने एकदम से एक एलियन जैसा AI आता है, और AI कैरेक्टर आता है। वो बड़े ही अच्छे से सामने वाले एलियन AI कैरेक्टर से पूछ रहा होता है कि डू यू नो व्हाई आर माउंटेन्स फनी। जी हाँ, और वो कहता है नहीं, मेरे को नहीं पता। तो वो सामने से बोलता है बिकॉज दे आर हिलेरियस, हिलेरियस। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
14: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
13: ऐसा क्या खास है वहाँ?
14: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
13: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
14: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
16: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ.
17: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं उस डार्क हॉर्स की जो कि मूवी इंडस्ट्री में एकदम तूफान लेकर आ गया है. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी हनुमान अंश. नाउ दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन. उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जिंदगी की कहानी के बारे में ये जो है मूवी बनी है. और ये बात हो रही है नीम करोली बाबा जी की और वो क्यों बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं, फिर चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, फिर चाहे वो जूलिया रॉबर्ट्स हो, फिर चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो और इंडिया में भी बहुत सारे लोग. सो बेसिकली उन्हीं की जिंदगी पर ये मूवी बनी है. और ये मूवी जब बनी थी तो बनी भी बड़े दिलचस्प सर्कमस्टांसेस में थी, क्योंकि जो इसकी प्रोड्यूसर है वो पहली बार मूवी प्रोड्यूस कर रही थी. बहुत बजट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 2.25 करोड़ का बजट था और उसमें ही इस मूवी को बनाया गया. जिस एक्टर को कास्ट किया गया उसने मूवी छोड़ दी तो एक बैक स्टेज पर्सन को जो कि लिटरली असिस्टेंट का काम करता था उसको एक्टर बनाया गया इस मूवी में, लीड एक्टर. और उसके बाद भी इनफैक्ट उसके अलावा भी जितने और एक्टर्स आपको इसमें दिखेंगे वो काफी सारे बैक स्टेज लोग हैं जो कि लिटरली असिस्टेंट या जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं जो कि इस मूवी में लिए गए। और फिर उसके बाद इस मूवी का जो रन है वो बहुत ही स्लो शुरू हुआ था, मतलब जब ये शुरू हुई थी लगी थी तो ये कुछ लाख की ही कमाई कर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये मूवी ज्यादा नहीं चलेगी। बट एक वर्ड ऑफ माउथ, एक इन्फ्लुएंसर का वर्ड ऑफ माउथ जिसने इस मूवी की किस्मत को बदल कर रख दिया। जी हाँ, और अब तो आलम यह है कि 400 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है, 400 करोड़। जी हाँ, 400 करोड़, विच मींस कि ये थ्री इडियट्स और कंतारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर चुकी है, मतलब उसने क्रॉस कर दिया इसको। एंड इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ क्रिश 3, चेन्नई एक्सप्रेस, 3 इडियट्स, कंतारा, तो ये पूरी तरह उसको भी पछाड़ के आगे बढ़ चुकी है। 2.25 करोड़ में बनी मूवी 400 करोड़ कमा चुकी है अभी तक। जी हाँ, मैं अभी भी स्ट्रेस डाल के बोल रही हूँ अभी तक, क्योंकि मूवी अभी बंद नहीं हुई है, उतरी नहीं है थिएटर्स में, अभी भी लगी हुई है। और ट्रेड पंडित्स का तो ये भी कहना है कि जिस हिसाब से ये मूवी का पेस जा रहा है, ये आगे और भी बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ने वाली है। एंड आई एम लिटरली ग्लैड कि ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहानी जिसके बारे में, वो बहुत ही खास इंसान है, और दूसरी बात, जिन्होंने इस कहानी को बनाने के लिए, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत की, अपने पैसे लगाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो पहली बार मूवी प्रोड्यूस कर रही थी, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेविंग्स, लिटरली सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी इस मूवी को बनाने के लिए, और अगर मूवी नहीं चलती तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचता, राइट? बट देन अगेन, हर एक मूवी की अपनी किस्मत है, और हनुमान अंश की किस्मत डेफिनेटली बहुत अच्छी है, ये हमें पता चल गया है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। आपको तो पता है गपशप चलती रहेगी और मजेदार बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लिया जाए, और रियलिटी चेक आपको खबरें ही देती हैं। दुनिया में क्या हो रहा है तब आपको पता चलता है कि ओह हमारी दुनिया कहाँ जा रही है। जी हाँ, सो या उसी का वक्त हो गया है। आई नो यू डोंट लाइक इट दैट मच, बट ठीक है, अपडेटेड रहना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की, जो कि बेसिकली है तो भारत का, लेकिन यहां पर उसे अमेरिका में मोस्ट वांटेड की अपराधियों की लिस्ट में जो है वो डाला गया है। और ये खबर है गोल्डी बराड़ की। जी हाँ, सो अपेरेंटली गोल्डी बराड़ को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किया। अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी FBI ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स यानी देश के 10 सबसे वांछित फरार अपराधियों की सूची में शामिल किया है। FBI के मुताबिक गोल्डी बराड़ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का आरोप है। FBI का कहना है कि गोल्डी बराड़ संगठित अपराध गिरोह अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत अमेरिका और कनाडा के कई इलाकों में हिंसक वारदातों में शामिल रहे हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गोल्डी बराड़ इस आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और उनकी तलाश काफी समय से की जा रही है। FBI ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना के लिए $10,00,000 यानी कि $1,000,000 तक के इनाम की

इनाम घोषित किया था। सो बेसिकली एक ऐसा इंसान जो हर जगह खतरनाक सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहा है, अपराधों को अंजाम दे रहा है, इसलिए दोनों देशों की जो पुलिस है वो इनके पीछे पड़ी हुई है और ऐसा होना भी चाहिए। आई होप जल्द से जल्द वो पकड़े भी जाएं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है, खबरों की बात हो रही है, यहाँ पर खबरों की बात करते हैं। और यहाँ पर ट्रंप ने भारतीय कंपनी से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। सो ट्रंप ने कुछ कंपनीज को लेकर और कुछ कंट्रीज को लेकर ये कहा था कि वो 100% टैरिफ जो है वो लगाने वाला है, उसमें कुछ फेर बदल जो है वो यहाँ पर हुए हैं। आइए जरा जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी SSR ग्रुप अपनी सहायक कंपनी मोसाबी मेटेलिक्स के जरिए अमेरिका के आयोवा राज्य में 18 अरब डॉलर की लागत से देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित करेगी। जी हाँ, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1 करोड़ टन स्टील होगी। मेसाबी मेटेलिक्स के चेयरमैन रेवन तरुया ने कहा कि यह निवेश अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मिनेसोटा में 3 अरब डॉलर का निवेश कर नए लोह अयस्क खदान परियोजना पर भी काम कर रहा है। यह अमेरिका में पिछले लगभग 50 सालों में शुरू होने वाला पहली नई लोह अयस्क खदान होगी। जी हां, एसआर समूह के सह संस्थापक रवि रुइया ने कहा कि समूह के दशकों से स्टील प्लांट, तेल रिफाइनरी और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया है। ट्रंप ने कहा कि यह परियोजना माइन से मिल तक पूरी तरह अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित होगी। उनके अनुसार इस संयंत्र में इस्तेमाल होने वाला लोह अयस्क अमेरिका में ही निकाला जाएगा और वहीं इस्पात का उत्पादन भी होगा, जिससे घरेलू विनिर्माण को नई मजबूती भी मिलेगी।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ फिर से जरा बात कर लेते हैं उसी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान और अमेरिका का विवाद। कहने को तो ट्रंप कहते हैं कि ये विवाद जो है और ये सारी महंगाई जो है वो यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से हो रही है, बट लेट्स बी रियल, वी नो किस वजह से ये हुआ है और ये हम कब तक सफर करने वाले हैं। आइए जरा इसी के बारे में कोई जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। सो ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने की खबर को बताया झूठ, वापस लेने की मांग की। तो चलिए, खुशखबरी यही है कि तेल जो है वो सस्ता नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही काफी है तेल के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज की गई रकम तक पहुंच देने की पेशकश किए जाने से जुड़े एक्सियोस की रिपोर्ट को खारिज किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया और रिपोर्ट को भी गलत बताया। ट्रंप के एक्सियोस की रिपोर्ट को झूठा बताते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाने के बदले प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज की गई ईरानी रकम तक पहुंच की पेशकश पर विचार किया गया है। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक्सियोस की रिपोर्ट पर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा ये काफी हद तक उस परमाणु समझौते जैसा है जिस पर राष्ट्रपति ओबामा ने बातचीत की थी और जिस पर मैंने भी काम किया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उस समझौते को खत्म कर दिया था और उसके बदले कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी। ब्लिंकन ने कहा कि यही एक बड़ी वजह है कि हम आज इस असफल और अनावश्यक युद्ध की स्थिति तक पहुंच गए हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए परमाणु मुद्दे समेत अन्य विषयों पर बातचीत की कोशिश की जा रही है। बाय द वे, एक और चीज है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत जो है वो शुरू हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि मध्यस्थ जो है वो कतर है फिर से, क्योंकि कतर के लीडर्स का कहना है कि वो जब से वो कार्यक्रम हुआ है ना, मतलब जब से वो अमेरिका ने हमला किया है, हमने चैन की सांस नहीं ली, बस अब थक गए हैं, अब हम रुक गए, रुक जाओ। या दैट्स व्हाट ही सेड, द लीडर ऑफ कतर। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा दिलचस्प चीजें अभी कुछ दिन में हुई हैं। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर नेतन्याहू की करने वाली हूँ, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी थोड़े दिन पहले यूएन में पहुंचे थे, यूएन असेंबली में अपनी स्पीच देने के लिए, बात करने के लिए। और वहां पर बहुत दिलचस्प चीजें हुई हैं जब ऑफकोर्स लोग उनको देखकर वहां से बायकॉट करने लगे और वहां से बाहर निकलने लगे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ओके, अब कोई फिर से कोई मॉरल मोरन है यहां पर तो वो यहां से जा सकता है, कोई और भी बचा है तो जा सकता है। मतलब ही वाज लाइक यू नो व्हाट, स्पेयर मी दिस यू नो ड्रामा, और जिसको जाना है वो जाओ, और भी है कोई तो वो भी जा सकता है। जी हाँ, सो दैट्स व्हाट ही डिड। फिर उसके बाद जो लोग चले गए थे और जिनको नहीं जाना चाहिए था, यूएस नहीं बल्कि इजरायली यू नो वही जो डिप्लोमैट्स थे, उन्होंने जाकर उनकी सीट पर उनके नाम चेक किए कि कौन कौन गया है। जी हाँ, सो उनके नाम चेक किए गए, उनके नाम लिखे गए और ये देखा गया कि ओके, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। दोस्त और दुश्मन भी वहां पे देखा गया। मतलब लिटरली वो स्पीच चल रही है और उसके बीच में जो है इजरायली यू नो डेलीगेट के जो बंदे हैं वो जा रहे हैं सीट्स के पास और वहां पर नाम नोट डाउन कर रहे हैं अपनी लिस्ट में और अपने नोटपैड में कि कौन कौन है जो यहां पर गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच के दौरान यहां पर नहीं था, जिनको होना चाहिए था। सब कुछ लिखा गया है, चिट्ठा, काला चिट्ठा जो है वो सब कुछ लिखा गया है अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री नेतन्याहू। जी हाँ, उसके अलावा जो सबसे फनी चीज हुई वो थी ईरानियन एम्बेसी का मोक करना नेतन्याहू को। जी हाँ, सो जब नेतन्याहू जो है इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे तो ऑफकोर्स उनके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। मतलब वो बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रहे थे और वो किसकी तरह लग रहा था, ये ईरानियन एम्बेसी ने लिखा है। सो ईरान की जो घाना में एम्बेसी है उसने लिखा हुआ था, टुडे एट द यूएन द डार्क लॉर्ड लेक्चर्ड द वर्ल्ड ऑन मोरालिटी, इवन द डेथ ईटर्स वॉकड आउट। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिएगा। सो ईरानियन एम्बेसी ने वहां पर यूएन असेंबली का वो पूरा का पूरा जो है वो पिक्चर लेकर नेतन्याहू की जगह वर्ल्ड इमोड को वहां पर खड़ा कर दिया और वहां पर लिखा हुआ है, टूडे एट द यूएन द डार्क लॉर्ड लेक्चर द वर्ल्ड ऑन मोरालिटी इवन द डेथ ईटर्स वॉकड आउट। कि भाई ये बोलने के लिए, इमोक करने के लिए कि भाई तुम तो ना वर्ल्ड इमोड जैसे ही हो, वर्ल्ड इमोड के जैसे ही हरकतें तुम कर रहे हो, जैसे वो डिक्टेट करता था हैरी पॉटर में सबको, है ना, और जो डेथ हीटर्स जो उसको फॉलो करते थे वो भी छोड़कर चले गए तुम्हारी बातें सुन के। सो या मैं कह रही हूं ना, ईरानियन एम्बेसीज की जो ये गेम है ना, सोशल मीडिया गेम है, डिजिटल गेम, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये यूएस को भी बहुत ज्यादा मोक करते हैं, लेकिन यहां पर नेतन्याहू की जगह वर्ल्ड इमोड को रखना और उनको कंपेयर करना एक दूसरे से और ये कहना कि वर्ल्ड इमोड जो है वही नेतन्याहू है और नेतन्याहू जो है वो वही बिल्ड इमोड है, तो ये भी एक बहुत ही फनी चीज है। लाइक नोबडी, मतलब ऐसे कोई, हर कोई नहीं सोच सकता इस बारे में, राइट। सो या मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं नेतन्याहू की वर्ल्ड इमोड की तरह के डेथ ईटर्स भी वहां से चले गए। मतलब जो लोग पापी हैं वो भी चले गए कि नहीं नहीं इस बंदे के पाप का घड़ा जो है वो बुरे हाल से बढ़ गया है, हम भी ये नहीं सुन सकते, हमारे कान से भी खून आ जाएगा। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक थेरेपिस्ट पूछता है व्यक्ति से जो कि उसके पास थेरेपी लेने आता है और वो काफी टाइम से ले रहा है। उसके बाद वो पूछता है एक क्वेश्चन, सो हाउ डू वी डील विद समवन हु हेट्स अस फॉर नो रीजन। जी हाँ, माइंड यू ये थेरेपिस्ट पूछ रहा है उस व्यक्ति से जो कि काफी टाइम से थेरेपी लेने उस थेरेपिस्ट के पास आ रहा है और अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। क्वेश्चन ये है, अगेन मैं आपसे आपको बताऊंगी, हाउ डू वी डील विद समवन हु हेट्स अस फॉर नो रीजन। ये थेरेपिस्ट पूछता है, तो सामने से व्यक्ति पूछता है गिव देम अ रीजन। जी हाँ मतलब थेरेपिस्ट पूछ रहा है कि हाउ डू वी डील विद समवन हु हेट्स अस फॉर नो रीजन, तो सामने से व्यक्ति बोल रहा है कि गिव देम अ रीजन. जी हाँ, मतलब ऑफकोर्स अगर कोई ऐसे नॉर्मल बात करेगा और नॉर्मल लॉजिक लगाएगा, तो अगर कोई हमें बिना फालतू के, मतलब बेफालतू के, हमें अच्छा नहीं समझता, हमसे नफरत करता है, गलत गलत चीजें हमारे बारे में बोलता है, तो ठीक है, हम रीजन ही दे देते हैं फिर वो करने का, एटलीस्ट वो बात तो बनेगी, सेंस तो बनेगी. तो थेरेपिस्ट बोलता है सामने से, नो दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. जी हाँ, थेरेपिस्ट बेचारा सोच रहा है कि ये क्या भाई, मैंने इतनी थेरेपी की, कुछ समझ नहीं आया क्या इस बंदे को, मतलब क्या चल रहा है. मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ डू वी डील विद समवन हु हेट्स अस फॉर नो रीजन, तो सामने से व्यक्ति बोल रहा है ओके गिव देम अ रीजन. जी हाँ, मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से तो बंदा सही है, थेरेपिस्ट गलत है. आई थिंक उस बंदे को अपना थेरेपिस्ट चेंज करने की करने के बारे में सोचना चाहिए. मतलब ऑफ कोर्स इफ समवन इज हेटिंग ऑन अस फॉर नो रीजन, देन वी शुड गिव देम अ रीजन फॉर टू हेट अस, राइट? दैट्स हाउ इट शुड बी. आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा तुम भी सही काम नहीं कर रही हो, तुम भी हमारे साथ हमें गलत सलाहें दे रही हो. मैं तो कहती हूँ भाई, जिंदगी में जीना है, अच्छे से जीना है, सामने से कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, लेकिन सामने से अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सहने की जरूरत भी नहीं है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे मीम्स ऐसे आते हैं जो आपको हंसाते हैं और कुछ आपको रियलिटी चेक देते हैं, कुछ आपको लॉजिकल लगते हैं। लेकिन कल जो मेरी आंखों के सामने एक मीम आया एंड आई वाज लाइक, जब मैंने उसे पढ़ा आई वाज लाइक वाह, ये सच है और ये कितना अलार्मिंग है ये हमें पता भी नहीं है। जी हाँ, सो वहां पे लिखा हुआ था कि दीज डेज आई डोंट केयर हाउ आई लुक इन फोटोज एनीमोर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे लिखा हुआ था दीज डेज आई डोंट केयर हाउ आई लुक इन फोटोज एनीमोर, नाउ आई वांट टू लुक गुड इन एक्सरेज, सोनर्स एंड ब्लड रिपोर्ट्स। भाई ये सारे टेस्ट अच्छे होने चाहिए, बाहर से कैसे दिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। एंड आई वाज लाइक या That's true. और ये चीज कितनी ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा आर्टिफिशियल हो गए हैं, हम लोग इतने ज्यादा ऐसे हो गए हैं कि सुपरफिशियल हो गए हैं कि हमें लगता है कि बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा है, बस हमें अच्छा दिखना है, बाहर से जो है वो अच्छा दिखना है, अंदर से कैसा दिख रहा है इंसान वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हेल्थ अच्छी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, आप विटामिंस अपनी टाइम पे ले रहे हो, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब आप बाहर जाके वो जंक खा रहे हो और बाहर जाके वो सारी चीजें खा रहे हो जो कि प्रिजर्वेटिव से बनी हुई है, और वो सारी चीजें हमें अंदर से गड़बड़ कर रही है। सो बेसिकली हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा अपने एक्सटीरियर पर ध्यान दे दिया, आपने इंटीरियर पर नहीं दिया। लेकिन अब ये वाली जो जनरेशन है जेंजीज की, ये बहुत सारी चीजों के बारे में हमें अवगत करा रही है। और अब जो लोग हैं जो कि लिटरली अभी अपने 30s में हैं या फिर अभी 40s में आए हैं, या 40s की भी आप बात छोड़िए, जो 30s में है बेसिकली, ये जो मिलेनियल्स हैं, ये लिटरली इनको पता चल गया है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मतलब बाहर से अच्छा दिखना, अच्छा फेस मास्क लगाना या वो सब, अच्छा मेकअप करना, खूबसूरत दिखना, अच्छे कर्ल्स करना, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इम्पॉर्टेंट इज कि हमारी ब्लड रिपोर्ट सही आ रही है या नहीं, हमारा एक्सरे सही आ रहा है या नहीं, मतलब ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑफकोर्स यहाँ जिसने भी ये बनाया है वो बड़ी पते की चीज बनाई है कि दीज डेज आई डोंट केयर हाउ आई लुक इन फोटोज एनीमोर बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू लुक गुड इन एक्सरे, सोनर्स एंड ब्लड रिपोर्ट्स। अगर वहां पे सब सही है फिर सब सही है, बाहर से कैसा दिख रहा है इंसान वो मैटर नहीं करेगा, अंदर से क्या चल रहा है वो मैटर करता है। So I was like, yeah, that's true. So time पे exercise कीजिए, time पे vitamins लीजिए, अपना खाना अच्छे से खाइए और अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कैसे आ रहे हो फोटोज में वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और फाइनली वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का. जी हाँ, जो पुराना है वही खास है, वही सुहाना है. जी हाँ, सो आइए जल्दी से शामिल हो जाइए, आप भी शामिल हो सकते हैं. नंबर हम आपको दे चुके हैं, अगर आपके पास कोई पुराना गाना है. जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई पुराना गाना है जो आपको बहुत पसंद है, या आप किसी को कोई पुराना गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज इस सेगमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने आपके लिए प्ले करेंगे. उस एरा में आपको लेकर जाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत और प्योरिटी से भरी हुई थी. जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आ जाइए जल्दी से. और जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ सबसे पहला, वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जिस एक्टर ने इस गाने में एक्टिंग की है, इस फिल्म में एक्टिंग की है, जो बेसिकली ये गाना जिस पर पिक्चराइज किया गया है, उनका आज जन्मदिन है. एंड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, उनका मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है. ही वॉज अनबीटेबल. जी हाँ, व्हेन इट कम्स टू कॉमिक टाइमिंग, ही वॉज अनबीटेबल. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ दैट एरा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन महमूद हिमसेल्फ. जी हाँ, आज है महमूद जी का जन्मदिन, और आज के दिन ही वो पैदा हुए थे. आज ही के दिन उन्होंने इस धरती पर कदम रखा था, और उन्होंने कहा था कि ओ आई एम गोना एंटरटेन यू इन अ वे कि आप कभी भी नहीं भुला पाओगे. लिटरली मतलब आप कोई भी जनरेशन से हो, अगर आपने महमूद को करते हुए देख लिया तो आप उनके फैन हो जाओगे. और उनका एक गाना है जो इतनी मस्ती से भरा हुआ है, इतना मजेदार है, जो मुझे लगता है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो वही गाना हमें प्ले करना चाहिए था. नॉट बिकॉज आई एम अ रेसिस्ट और एनीथिंग, बट बिकॉज ये गाना बहुत ही ज्यादा फन है, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और ये महमूद की पर्सनैलिटी को ही शो करता है. इन अ वे ही वॉज अ वेरी फनी पर्सन. जी हाँ, सो या ये गाना जो उन्हीं का गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं आप सबके लिए.

ताले ताक धम ताक ताले ताक जम ताक धला आंग ताक धग ताक ताडे के नक ताक नक ताक जम ताक नक नक जम ताक नक नक जम ताक नक नक जम तारे ता जग तारे ता जन जाने को धारे दाबो तारे के ताले तारे ता जग तारे ता जन जाने को धारे दाबो तारे के जम

0: पीछे नहीं हटूंगा मैं, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: जी दोस्तों, जिस कैलिबर के एक्टर थे महमूद, ऐसा कहा जाता था कि बड़े बड़े हीरो इनसे डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि अगर महमूद किसी हीरो के साथ एक पिक्चर में काम कर रहे हैं तो वो उस एक्टर को खा जाएंगे, मतलब उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बलवान होगी कि हीरो की एक्टिंग नजर ही नहीं आएगी। महमूद इतने खतरनाक कैलिबर के थे कि उन्हें देखने के लिए लोग थिएटर्स में पहुंच जाते थे। जी हाँ, मतलब आपकी पिक्चर में महमूद है बस इतना ही काफी होता था और लोग उन्हें देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच जाते थे। उनको ये मतलब नहीं होता था कि अच्छा महमूद है तो साथ में हीरो कौन है, हीरो का कोई चक्कर ही नहीं था। जी हाँ, और ये कहना है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही मजेदार एक्टर जो है वो महमूद था। इसके साथ शूटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता था, आउटडोर इनडोर और लिटरली इसके साथ काम करने से बड़े बड़े हीरो डरते थे सिवाय धर्मेंद्र। जी हाँ, मैंने इसके साथ काम किया है, बहुत ही मजा आया है मुझे, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि महमूद जैसे कैलिबर का एक्टर होना बहुत ही बड़ी बात है और वो शायद कभी और होगा भी नहीं। एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ महमूद की बात हो रही है। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा अगर कोई महमूद का करता आया है तो वो मुमताज है। जी हाँ, मुमताज ही वो इकलौती हीरोइन है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने महमूद के साथ एक्टिंग के बारे में बहुत सारे किस्से सुनाए हैं, लेकिन महमूद कितने अच्छे, मतलब एक्टर तो थे ही लेकिन कितने गजब के वो शख्स थे, उसके बारे में बताया है मुमताज ने। मुमताज कहती हैं कि एक वक्त था जब उन्हें कोई भी अच्छी और बड़ी मूवीज में लेने के लिए तैयार नहीं था। जी हाँ, मैं काफी मूवीज कर रही थी, काफी काम कर रही थी, लेकिन कोई भी बड़ा डायरेक्टर या बड़ा हीरो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। और अगर कहें तो मैं बी ग्रेड पिक्चरों में काम कर रही थी, ए ग्रेड पिक्चर्स में आने का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वहां पर महमूद आए और महमूद मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने दिलीप साहब से बात की और दिलीप साहब ने पहली बार, जो बहुत ही बड़े हीरो थे, और उन्होंने पहली बार मेरे साथ काम करने के लिए कहा। लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि महमूद ने दिलीप साहब को कहा कि यूसुफ साहब, एक लड़की है जो बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन किसी वजह से वो कभी भी कोई सी बड़ी पिक्चर का जो है वो हिस्सा नहीं बन पाई है, तो क्या आप देखेंगे, क्या आप उसे अपनी पिक्चर में लेंगे? तो दिलीप साहब सामने से कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा काम करती है, वो अच्छी दिखती है, मैं क्यों नहीं लूंगा। तुम ऐसा करो, उसका कोई ऑडिशन मुझे दिखाओ और फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। बस फिर यही हुआ, महमूद ने ऑडिशन जो है वो दिलीप साहब को दिखाया और दिलीप साहब ने सच में कहा। दिलीप साहब कहते हैं कि कितनी खूबसूरत लड़की है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रही है, मुझे नहीं समझ आया कि आज दिन तक किसी बड़े हीरो ने इसके साथ काम क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगी। जी हाँ, मैं करूंगा। और दिलीप साहब ने मुमताज को वो मौका दिया और उसके बाद मुमताज के सक्सेस की सीढ़ियां जो हैं वो चढ़ती ही चली गई। जी हाँ, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्रेडिट महमूद साहब को मुमताज देती है। मुमताज कहती है कि अगर महमूद साहब नहीं होते तो शायद मैं कभी भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाती, कभी भी शायद मैं इस लेवल का काम कर ही नहीं पाती। इट वॉज बिकॉज ऑफ महमूद साहब कि मुझे दिलीप साहब ने मौका दिया और फिर आज आप मुझे जानते हैं। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। आप मजे कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से बेहद बेहद ही खूबसूरत सा गाना।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में बाढ़ राहत सामग्री की बड़ी खेप रवाना। यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से नेपाल के बाढ़ प्रभावित बच्चों और परिवारों के लिए इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई भेजी है। इस खेप में अस्थायी क्लासरूम, टेंट और पढ़ाई का सामान शामिल है। वहीं ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सामान्य। जी हां, पिछले दिनों पैसेंजर्स, ट्रैफिक और कतारों की समस्या के बाद ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब उड़ानों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। वहीं ब्रिस्बेन में स्थानीय बिजनेस और डेयरी सेक्टर के लिए खास पहल। क्वींसलैंड सरकार ने स्थानीय किसानों और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए अनुदान यानी ग्रांट की घोषणा की है। इसका फायदा ब्रिस्बेन और आसपास के ग्रामीण इलाकों के उत्पादकों को सीधे तौर पर मिलने वाला है। वहीं ब्रिस्बेन में नागरिक उड्डयन सुरक्षा जांच तेज। हाल ही में हुए एक विमान हादसे की जांच के सिलसिले में ऑस्ट्रेलियाई वायु सुरक्षा अधिकारियों ने उड़ान नियमों और निजी विमानों की तकनीकी जांच के कड़े दिशा निर्देश लागू किए हैं। वहीं क्वींसलैंड के मौसम का भी हाल जो है वो कुछ डिफरेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। जी हाँ, आज मौसम जो है वो बढ़िया रहा और आगे आने वाले दिनों में गर्मी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ब्रिस्बेन कम्युनिटी और कल्चरल इवेंट्स की शुरुआत। ब्रिस्बेन शहर में स्थानीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए एक नए कम्युनिटी फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और म्यूजिकल बैंड्स को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर महाराष्ट्र में पहला 100 मीटर लंबा और लगभग 14,005 टन वजनी स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक बिछा दिया गया है। वहीं डिजिटल पेमेंट यूपीआई पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं स्पेस सेक्टर में भारत का नया कारनामा। भारतीय स्पेस स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस अपना पहला कंप्यूटिंग सैटेलाइट MOIA-1 लॉन्च करने जा रहा है। ये सैटेलाइट स्पेस में ही डेटा प्रोसेस करेगा, जिससे जमीन पर डेटा भेजने में लगने वाला समय काफी बच जाएगा। वहीं उज्जैन में प्रशासनिक कदम और स्थिति नियंत्रण में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। शाही मस्जिद के आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाने की तैयारी के बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं उत्तरकाशी के कालिंदी पास में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित कालिंदी पास ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्राओं ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले दवाइयों पर भारत को अमेरिका से मिली बड़ी राहत। जी हाँ, अमेरिका ने भारत समेत 20 देशों से आयात की जाने वाली स्पेशल दवाओं पर टैरिफ यानी टैक्स में छूट देने का बड़ा फैसला किया है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक चर्चा, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अमेरिकी कांग्रेस के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों, एनर्जी सिक्योरिटी और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत बात हुई। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी और पावर बैलेंस पर भारत का रुख। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि दुनिया भर में शक्तियों का संतुलन तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी बड़े सुधार देखने को मिल रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और सीमा सुरक्षा पर वैश्विक सतर्कता, विभिन्न देशों के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा शुल्क और इमिग्रेशन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जांच प्रक्रिया तेज करें। वहीं वैश्विक मंच पर एआई और फेक न्यूज पर चिंता। जी हाँ, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश के बाद कई देशों ने इस पर कड़े कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं वर्ल्ड हार्ट डे पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल की सेहत को दुरुस्त रखने और सही खान पान के आदतें अपनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स 2026, भारत की ईशा सिंह ने जीता सिल्वर। एशियन गेम्स 2026 में भारत की 21 साल की शूटर ईशा सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं एशियन गेम्स में भारत के कुल 37 मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अब तक कुल 37 मेडल जीत चुका है। वहीं मेडल तालिका में चीन का दबदबा बरकरार। एशियन गेम 2026 की मेडल टेबल में चीन का दबदबा कायम है। चीन ने 200 मेडल का आंकड़ा पार करते हुए कुल 205 मेडल के साथ पहला स्थान हासिल रखा है। उसमें 119 उनके गोल्ड मेडल ही हैं। ऐसे के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, आगामी सीरीज के लिए टीमों की तैयारी। आगामी वर्ल्ड कप और द्विपक्षीय सीरीज को ध्यान में रखते हुए प्रमुख क्रिकेट टीमों ने अपने रणनीतियों में बदलाव किया है। युवा खिलाड़ियों को लगातार मौकों की बदौलत अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। वहीं टेनिस दुनिया से ताजा अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सर्किट पर दिग्गजों की वापसी से मैच और रोमांचक हो गए हैं। आगामी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ी कोर्ट पर पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ विश्व बैडमिंटन, भारतीय शटलरों का जलवा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारतीय शटलरों ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज किया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 17।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOC, caring with dignity.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। A place to call home, खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: आया क्या
3: आएगा?

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं।
1: आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: जवानी दीवानी थोड़ी आग है थोड़ा सा पानी।
1: बिच्छू ओ बिच्छू ये बिच्छू मुझे साथ खाएगा।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के

सत श्रीकाल जी, मैं हां संदेश अलग शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो दसौनी 101.1 AM। ते जिला हो चुके हैं हुण तक ते हम खबरां दा, तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुक करते हैं पंजाब दे वल, जिथे लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी दे विवाद ते हुण तक दी वड्डी अपडेट सामने आई है। दरअसल यूनीवर्सिटी दी सीनियर मैनेजमेंट सामने आई है, यूनीवर्सिटी दी प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर रश्मि मित्तल दी वीडियो ने सोशल मीडिया ते सनसनी फैला दी है, जिस विच उसने इस गल ते अफसोस जताया है कि सब करन तो पहला स्टूडेंट्स उन्हां दे कोल नहीं आए। उन्हां अपने दफ्तर विच विद्यार्थी नुमाइंदियां नाल गलबात करन उपरंत समुचे विद्यार्थी भाईचारे नाल अपना दुख सांझा कीता ते कैंपस विच अमन शांति बनाए रखने की अपील की। रश्मि मित्तल ने कहा है कि एक घटना सोशल मीडिया ते फैली एक अफवाह कारण वापरी, जिस ते विद्यार्थियों ने बिना जांच किते भरोसा कर लिया। उन्हां दुख प्रगटाउंदियां कहा है कि इस जांच दौरान कुछ बाहरी अंसरां ने विद्यार्थियों नाल मिलकर कैंपस विचलियां दुकानां विच लुट खो कीती। उन्हां स्पष्ट कीता है कि अजिहे गलत ते बाहरी अंसरां खिलाफ पुलिस वल्लों गंभीरता नाल सख्त कार्रवाई कीती जा रही है ते यूनिवर्सिटी भी अपनी जिम्मेवारी निभाएगी। अपने बयान विच प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर रश्मि ने कहा है कि एलपीओ ते विद्यार्थियों विचकार परिवार वर्ग का खास रिश्ता है, जिथे 400 तो वध स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन विच लगभग 4000 विद्यार्थी समागम दे प्रबंधन की जिम्मेवारी सामदे हन। उन्हां अफसोस जताया कि यूनिवर्सिटी विच स्टूडेंट रिलेशनशिप डिवीजन RMS पोर्टल अते हर मंगलवार अते शुक्रवार नूं हुंदियां विशेष बैठकां वर्गे सिद्धे संचार माध्यम होण दे बावजूद विद्यार्थियों ने प्रशासन नाल गलबात करन दी बजाए अफवाह ते यकीन कर लिया। उधर भारत सरकार वल्लों भाखड़ा अभ्यास प्रबंधकी बोर्ड दे चेयरमैन मनोज त्रिपाठी दे कार्यकाल विच 3 महीनियां दा वादा कीता गया। इस संबंधी मंत्रालय वल्लों अधिकारित हुक्म जारी कीते गए ने। हुक्म अनुसार मनोज त्रिपाठी दा मौजूदा कार्यकाल 27 सितंबर 2026 नूं समाप्त होना सी। हुण 3 महीनियां दा वादा मिलण तों बाद 27 दिसंबर 2026 तक भाखड़ा अभ्यास प्रबंधकी बोर्ड दे चेयरमैन वजों सेवावां निभाउणगे। उधर पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके भाजपा ने एक बार फिर अपनी योजना विच वड्डा बदलाव कीता है। लंबे समय तक श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ विच रह के मुख रूप नाल शहरी अते गैर सिख वोटरां ते केंद्रित रही भाजपा हुण सिख लीडरशिप नूं वी प्रमुखता दे रही है। माहिरां दा कहना है कि पार्टी दा टीचा सिर्फ अपना आधार वधाउणा नहीं सगों सूबे दी सत्ता दी लड़ाई विच मजबूत दावेदारी पेश करना है। भाजपा ने रवनीत सिंह बिट्टू अते सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों नूं प्रमुख सिख खचेरिया वजो अगे कीता है। भाजपा साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पार्टी के सीनियर सिख नेतावां विच शामिल हन। अकाली दल नाल गठजोड़ टुटण तों बाद भाजपा ने पंजाब विच अपने दम ते संगठन खड़ा करन दी दिशा विच तेजी कर दित्ती है। उधर दूजे पासे पाकिस्तान दे रक्षा मंत्री खवाजा आसिफता एक अफगान महिला पत्रकार दे सवाल ते दिता जवाब विवादां विच आख्या है। पत्रकार ने पाकिस्तान दे तालिबान नाल संबंधा अते अफगान औरतां बारे तालिबान दीआं नीतियां ते सवाल पुछिआ सी। वीडियो विच नजर आ रहा है कि सवाल सुनन दौरान आसिफ ने पत्रकार नूं विचाले रोक दिता ते उस दे पहरावे वल इशारा कीता। इस तों बाद उसने गले ते हथ फेरन दा इशारा करदिआं कहा है कि अजिहे वापस ना जाणा, उथे ओ नहीं ता ओ। उन्हां दे इस इशारे नूं सोशल मीडिया ते कई लोकां ने धमकी वजो देखिया ते इस दी तिखी आलोचना कीती है। न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 86वें सैशन तो वक्त महिला पत्रकार ने खवाजा आसिफ तो पुछा है कि तालिबान लई पाकिस्तान दा हुण की सुनेहा है अते की ओ अफगान औरतां नूं लैके अपनियां नीतियां बदलण लई कहणगे। पत्रकार ने यह भी सवाल किया कि जदों तालिबान नूं पाकिस्तान दा दोस्त मन्या जांदा सी उदों पाकिस्तान ने शुरुआत विच ही उस नूं अजिहियां नीतियां ना अपनाउण लई क्यों नहीं किया। आसिफ ने सवाल दा सीधा जवाब नहीं दिता ते पत्रकार दे कपड़ियां वाले इशारा करदिआं अपनी गल रखी। उधर नेपाल दे हिमलुंग हिमाल चोटी ते सोमवार नूं बर्फ खिसकण वाली थां तो दो होर लाशां बरामद हुईयां ने, जिस नाल बरामद कीतियां गईयां लाशां दी कुल गिणती 4 हो गई है, जदों कि 12 लोक अजे वी लापता हन। अधिकारियों ने संबंधी जानकारी दित्ती है। एतवार नूं नेपाल दे मनंग जिले दे नारफू खेतर विच 7126 मीटर उची हिमलुंग हिमाल चोटी दे बेस कैंप ते बर्फ खिसक गई, जिस नाल ओ तंबू दब गया, जिस विच पर्वतरोही अते सहायता कर्मचारी पनाह लै रहे सन। इस मंखरों कई स्टाफ मैंबर अते गाइड लापता हो गए।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀ ਬਿਸੋਨੀ ਵੰਸਰ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: हाँ जी, मोटा साधुआ

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.9 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला हो चुका है जी। ते इस दौरान असी ढेर सारिया गल्लां तां कहानियां ही कहानियां ने, नालों नाल गीतां दा सिलसिला साडा लगातार जारी रहेगा। तुसी बस जुड़ते रहो साडे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 101.9 साडा फेसबुक पेज है जी, ते ब्रिसोनी@ब्रिसोनी.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुणे वापिस सौनी आ, थोड़े नाल गल्लां करन दे लई जाणा किते वी नहीं हैगा, बस तुसी इन्हां सोहणे जिहे गीतां नूं इंजॉय करना। मैं हुणे वापिस आई

0: जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिन बने हुए। देखो आज मैं सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड के किसी एक सितारे बारे क्यों ना गल कर लिए है ना। तो अजकल जिहड़ी फिल्म की सब तो ज्यादा चर्चा है, हालांकि वह फिल्म रिलीज दिवाली ते होनी है पर उस दी चर्चा बहुत ज्यादा हैगी है रामायण। रामायण की गल कर रही हां मैं, तो गल क्यों ना उस दे लीड एक्टर की कर लिए रणबीर कपूर की। बहुत शानदार एक्टर आ तो रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म रामायण विच भगवान राम का किरदार निभाउण दे नजर आउणगे। इस रोल नूं लैके उन्हां दे फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वह पहली बार अजिहा होगा जब रणबीर किसी पौराणिक किरदार दे विच नजर आउणगे परदे ते दिखणगे। तां उन्हां बारे गल करदे आं पर पहले एक गीत सुण लो तुसीं।
1: Person

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी आनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसन ओवर एम ते चार चे संदेश अलग दिन से बने हुए रणवीर की जो गल करिए ना तो हर तरह का किरदार निभा चुके ने रणवीर अपने हुण तक के करियर विच ना रणवीर ने रोमांटिक हीरो तो लैके जुनूनी रॉक स्टार किरदार ते मासूम किरदार ते नैगेटिव शेड वाले किरदार हर तरह के वक् वक् रोल्स ने जिहड़े निभा ले है कि नहीं ते इस मौके मैं सोचा कि अज जदों उन्हां दी गल कर ही रहे हां तां उन्हां दीआं कुछ अजिहीआं फिल्मां बारे गल करते हैगीआं जिन्हां ने उन्हां नूं इक वक्खरी पहचान दवाई हैगी आ। शुरुआत तो शुरुआत शुरू करांगे ना, शुरुआत मतलब कि जदों उन्हां ने करियर की शुरुआत की सी उत्से तो ही गल करांगे एक एक करके। तां हुण तुसीं आए करो सोचो कि कीड़ी सी डेब्यू मूवी रणबीर कपूर की, फटाफट दे नाल सोचना शुरू करो। मैं हुणे वापस आनी उन्हां समां इस गीत तों इंजॉय करो।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

सावरिया तो बाद क्योंकि रणबीर की पहचान वेकअप सिड नाल मजबूत हुई सी। साल 2009 आई आयान मुखर्जी की इस फिल्म विच उन्होंने सिद्धार्थ यानी कि सिड का किरदार निभाया सी। फिल्म ने रणबीर नूं सिर्फ रोमांटिक हीरो की इमेज तो अगे वधन का मौका दिता। इस दौर विच अजब प्रेम की गजब कहानी अते रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर वर्गियां फिल्मां भी उन्हां दी रेंज उसने दिखाई सी। बहुत शानदार फिल्मां सी, हालांकि रॉकेट सिंह इन्नी नहीं चल सकी, बट नो डाउट अच्छी एक अलग किरदार देखने मिलिया सी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
4: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसरो वन एम से चार छे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो हुण गल करिए किसने गंभीर अभिनेता बनाया था, गंभीर अभिनेता बनाया देखो रॉक स्टार ने 2011 दे विच आई सी। 2011 विच रॉक स्टार रणबीर दे करियर दा सब तो वड्डा मोड़ मनी जांदी है। इम्तियाज अली दी इस फिल्म विच उन्होंने जनार्दन जॉर्डन जाखड़ दा किरदार निभाया। इस किरदार विच रणबीर ने ना रोमांस गुस्सा दर्द ते जुनून वर्गे कई इमोशंस नूं परदे ते उतारिया। फिल्म विच उन्हां दी एक्टिंग नूं खूब सराहाया गया ते उन्हां नूं फिल्म फेयर विच बेस्ट एक्टर दा अवार्ड मिलिया सी।

0: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। हुण गल करदे आ जिहड़ी सब तो ज्यादा यादगार मनी जाती है रणबीर कपूर की फिल्म, वह है जी संजू। संजू ने बदले बायोपिक स्टार वाली पहचान। 2018 आई थी राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू। संजू ना रणबीर ने एक्टर संजय दत्त का किरदार निभाया सी। ये उन्होंने करियर की एक होर वड्डी चुनौती सी क्योंकि उन्होंने सिर्फ लुक ही नहीं बल्कि संजय दत्त की वक् वक् उम्र जिंदगी के कई दौर न पर्दे से उतारिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से भी चंगा प्रदर्शन किया। रणबीर नू एक बार फिर फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है संजू के लिए।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: Lavish.

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सनडाउनर विथ रंग।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: सोचो कि ऐसे क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।
3: तो तुम्हें मेरी स्माइल क्यूट लगती है?

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Hum dil ke bure nahi, bas ek kharabi hai, aadat se nahi, hum

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: ज्यादा

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: भैया सुकू सुकू।
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू। आई आई

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: 4.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: तेरी मैडम, आई एम योर ओनली मैडम।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

0: हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में। कृपया इस नंद किशोर दास का प्रणाम स्वीकार करें। हमारे पिछले कार्यक्रम में हम देख रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी अर्थात समलिंगी कामुकता के विषय में वेद शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसी मति का परित्याग करने को कहते हैं, क्योंकि इसमें दुर्गति और अनर्थ के सिवाय और कोई अंतिम परिणाम हो ही नहीं सकता। इस जगत में कई अनुचित और हानिकारक संबंध होते हैं, और हमारे लिए कौन से संबंध उद्धारजनक है और कौन से विनाशकारक है, इसको पहले से ही भगवान ने स्थापित कर हमें वेद शास्त्रों के माध्यम से जानकारी दे दी है। कुछ कुछ निषेध या अवैध संबंध इस प्रकार है। एक स्त्री का दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, एक गुरु का शिष्य के साथ शारीरिक संबंध, एक माता का अपने बेटे के प्रति संभोग का संबंध, एक पिता का अपनी बेटी के प्रति संभोग का संबंध, एक भाई का अपनी बहन के प्रति संभोग का संबंध, एक पुरुष का एक पराई स्त्री के प्रति संभोग का संबंध, और उसी प्रकार एक स्त्री का एक पराये पुरुष के साथ अवैध संबंध। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंधों को भी एक अवैध संबंध कहा गया है। ऐसे अनुचित संबंध स्थापित करने से चेतना पर बहुत ही बड़ी क्षति पहुंचती है। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमने ब्रह्मा का उदाहरण बताया था, जिन्हें अपनी बेटी के प्रति आकर्षण था और उनकी मति तो किसी के उपदेश से शुद्ध नहीं हो पाई। केवल भगवान के हंस अवतार ही उनकी मति को पलट सके। जो सभ्य पुरुष होते हैं वे कभी अनुचित संबंध स्थापित नहीं करते। सारे महाभारत में अर्जुन अत्यंत विख्यात है। जब अर्जुन को युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वर्ग लोक की यात्रा की थी। जब स्वर्ग लोक में उर्वशी नाम की अप्सरा ने अर्जुन को देखा तो वो उनकी ओर मोहित हो गई और उन्होंने अर्जुन के समक्ष शारीरिक संबंध का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उसका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और जब उन्हें पूछा गया कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं, तब अर्जुन ने उर्वशी को ये याद दिलाया कि पूर्व काल में उर्वशी अर्जुन के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी थी और आज भी वे वही उर्वशी है। इसी कारण उनके साथ अर्जुन का संबंध केवल एक माता का हो सकता है और कोई शारीरिक संबंध संभव है ही नहीं। अर्जुन का ये वचन सुनकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दिया था। महाभारत में एक दूसरा दृष्टांत भी मिलता है और वो भी अर्जुन के संबंधित। जिस समय पांच पांडव और द्रौपदी एक वर्ष का अज्ञातवास महाराज विराट के राज में बिता रहे थे, उस समय राजकुमारी उत्तरा महाराज विराट की सुपुत्री अर्जुन से नृत्य और संगीत की कला सीख रही थी। वो अर्जुन की शिष्या थी, परंतु उस राज में उस समय सब लोग अर्जुन को एक नपुंसक बृहन्नला के नाम से जानते थे। तो उर्वशी का वो शाप इस समय अर्जुन के लिए उपयोगी बनता है। उस अज्ञातवास की समाप्ति पर जब महाराज विराट को अर्जुन का सत्य पता चलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि पांचों पांडव और द्रौपदी एक वर्ष तक उनके राज में आश्रय लिए हुए थे, तो वे बड़े ही प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपनी ही इच्छा से वे अर्जुन को अपनी सुपुत्री राजकुमारी उत्तरा का हाथ विवाह के लिए देना चाहते थे। परंतु उस समय अर्जुन ने उन्हें कहा कि ये कैसे हो सकता है, उत्तरा तो मेरी शिष्या है, मैं इसे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, परंतु हाँ मेरे पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। और इस प्रकार उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो हम इन उदाहरणों से देख सकते हैं कि कैसे सभ्य पुरुष अनुचित संबंध में नहीं पड़ता है, विशेष करके जब वो संबंध शारीरिक संबंध में बदल सकता हो, तब शास्त्र हमें बहुत ही सतर्क रहने को कहते हैं। कभी काल कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जिनमें शारीरिक संबंध अनुचित लगते हुए भी अनुचित नहीं होते हैं। ये दृष्टांत भी महाभारत में ही मिलता है। महाराज शांतनु के सत्यवती के साथ दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद को राजसिंहासन सौंपा गया, परंतु एक गंधर्व के साथ युद्ध में चित्रांगद मारा गया और उस समय उनके पास कोई संतान नहीं थी। उस समय विचित्रवीर्य बहुत ही छोटे थे, परंतु सत्यवती के आदेश के अनुसार छोटे विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, परंतु राज्य के संचालन के कारोबार भीष्म को सौंपा गया था जब तक कि विचित्रवीर्य बड़े ना हो जाए। परंतु उनके बड़े हो जाने के पश्चात भी उन्होंने रोग से पीड़ित होकर अपने प्राण गंवा दिए। उस समय उनके पास भी कोई संतानें नहीं थी। जब कोई भी पीढ़ी बची नहीं वंश को आगे बढ़ाने के लिए और राज सिंहासन को संभालने के लिए, तब ऐसी अवस्था में सत्यवती ने अपने पुत्र व्यासदेव को आदेश दिया कि वे अपने भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद के पत्नियों के गर्भ से संतान उत्पत्ति करे। ऐसा करने की अनुमति उसे विशेष परिस्थिति में दी गई थी। इसे कहते हैं देवरेना सुतोत्पत्ति, कि सुत अर्थात बच्चों की उत्पत्ति देवर के द्वारा। ऐसा केवल विशेष परिस्थिति में किया जाता था, अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए नहीं। और क्योंकि कलयुग में लोग अधिकतर कामातुर होते हैं, इसी कारण शास्त्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि देवर से बच्चों की प्राप्ति करनी कलयुग में निषेध है, इस युग में मना है। इसका दुरुपयोग करके लोग अधम बनकर नरक के निवासी बन सकते हैं। तो ऐसी कई वस्तुएं हैं जो पहले वैदिक संस्कृति में किए जाते थे, जो आज इस कलयुग में वर्जित है, अर्थात जिसे करना मना है। जब विवाह की बात आती है उसमें भी इसी प्रकार से है। वैदिक संस्कृति के अनुसार कई प्रकार के विवाह होते थे। वैदिक विधि के अनुसार तो सर्वोत्तम विधि ये है कि दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाए। दहेज भी यथाशक्ति देते थे, परिवार को कर्जे में डुबोकर नहीं। पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था, तो क्या उनकी सुपुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था? ना, उनका भी अधिकार होता था। उनके अधिकार का भाग उन्हें उनके विवाह के समय मिलता था दहेज के रूप में। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में विवाह का ये रूप प्रचलित है और शास्त्रों में तो इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कार्य कहा गया है। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना, या जिसे कन्या दान कहते हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति का पुण्य कार्य माना जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, परंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि प्रचलित है और उस विवाह विधि को कहते हैं ब्रह्म या राजसिक विवाह। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह वर्जित है, जैसे पहले वैदिक समय में प्रेम द्वारा, जयमाला के द्वारा और अपहरण के द्वारा भी विवाह किए जाते थे, परंतु इस कलयुग में ये सब विवाह विवर्जित है, मना है। पहले के समय में क्षत्रिय लोग अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राज परिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे, फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी। श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा है कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी के साथ विवाह किया था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसा ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया था, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। तो प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है, क्योंकि भारत देश भी विदेशों पर आश्रित रहने लगा। उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में तो सभी लोग शूद्र ही है। कई ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और वैश्यों ने भी अपने परंपरा के कार्यों का परित्याग कर दिया और इसी कारण वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का भी कहना है कलौ शूद्र संभव, इस कली काल में सभी शूद्र के समान है। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा, जो कि पहले समय में पालन होता था। जब कभी भी महान गुणों के स्थान पर अवगुण लोगों में आने लगते हैं, तब वे अपने ऊंचे स्तर को खो बैठते हैं और समाज में भी उनका सम्मान घट जाता है। जो लोगों के गुण अच्छे हो तो उनके आचरण भी अच्छे होंगे। जिन लोगों में अवगुण होते हैं ये गुण तो अवश्य ही उनके आचरण में दिखने लगेंगे। और जब किसी समाज के लोगों का गुण उनके आचरण विनाशकारक होते हैं तो ऐसे लोगों से निर्मित समाज जो है वो भी विनाश के मार्ग पर चलने लगते हैं। अब जो हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि अभी वर्तमान समय में ये लीगलाइज हो जाए कि विवाह के लिए कोई किसी स्त्री को किडनैप कर सकता है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अभी के समय में जो ऐसी छूट दी जाए लोगों को तो क्या कुछ नहीं होने लगेगा। इसी कारण जो कलयुग के मनुष्य को हानिकारक होगा इसे पहले से ही त्रिकालदर्शियों ने जानते हुए इस युग में वर्जित रखा है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि कई पुराणों में कई वैदिक ग्रंथों में कलयुग के लिए विशेष रूप से ऐसे नियम दिए गए हैं जो दूसरे युगों में नहीं थे। जैसे हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेणा सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयत, कि कलयुग में ये पांच वस्तुएं विवर्जित है। एक अश्व या घोड़े की बलि चढ़ाना, एक गाय की हत्या या बलि चढ़ाना, संन्यास ग्रहण करना, अपने पूर्वजों को मांस अर्पण करना और अपने भाई की पत्नी या अपनी भाभी के गर्भ में बच्चे उत्पन्न करना, ये सब इस कलयुग में विवर्जित है। और कहा यह भी है कलौ शूद्र संभवहा, कि कलयुग में जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। और फिर स्कंद पुराण में अशुद्धहा शुद्र कल्पा ही ब्राह्मणहा कलि संभवहा, कि कलयुग में अवश्य ही ब्राह्मण शूद्र की तरह अपवित्र हो जाएंगे, अर्थात कलयुग में ब्राह्मण शूद्रों की तरह जन्म लेंगे। वराह पुराण में तो यहां तक कहा गया है राक्षसाहा कलिम आश्रित्य जयन्ते ब्राह्म योनिषु। सुखदेव गोस्वामी भागवत पुराण में कहते हैं असंस्कृतः क्रियाहीना रजसा तमसावृतः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिनः। शास्त्रिक नियमों के उल्लंघन के कारण तथा वैदिक क्रिया कर्मों से न पवित्र होते हुए कलयुग में लोग राजसिक और तामसिक गुण से पूरी तरह से ढक जाएंगे। ततश्चानु दिनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्ष्यत्यायुर बलम स्मृति। तत्पश्चात हे राजन, धर्म सत्यता शुद्धता सहनशीलता दया जीवन की आयु शारीरिक बल तथा स्मृति या याद शक्ति दिन प्रतिदिन कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण घटते ही जाएंगे। वित्तम एव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में केवल धन को ही देखकर ऐसा माना जाएगा कि एक व्यक्ति ऊंचे घराने का है, उचित व्यवहार का है और उत्तम गुणों का है। न्याय और कानून केवल शक्ति के आधार पर ही नियुक्त किए जाएंगे। दाम्पत्य भिरुचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चही रतिर विप्रत्वे सूत्रमेव ही। पुरुष और स्त्री केवल बाहरी आकर्षण से ही साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता धोखा देने पर आधारित होगी। शारीरिक संबंध या मैथुन में कोई कितना निपुण है उसी से नारित्वता तथा मर्द को परखा जाएगा और किसी को जनोई पहने देखकर उसे ब्राह्मण मान लिया जाएगा। लिंगम एवाश्रम ख्याताव अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। एक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को केवल बाहरी चिन्हों से परखा जाएगा और जब वो अपना आध्यात्मिक स्तर बदले उस समय भी बाहरी चिन्हों से ही उसे परखा जाएगा। एक व्यक्ति के नीति और व्यवहार पर प्रश्न उठाए जाएंगे जो वो ठीक प्रकार से कमा नहीं रहा हो, जो उसकी अच्छी आमदनी ना हो और जो अपने वचन से चपलता दर्शाए उसे एक पंडित माना जाएगा, उसे विद्वान माना जाएगा। अनाध्यते वा साधुत्वे साधुत्वे दंभ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानम एव प्रसाधनम। एक व्यक्ति को असाधु माना जाएगा जो उनके पास धन न हो, और छल कपट और दंभ को एक उत्तम गुण माना जाएगा। विवाह केवल बातों से स्वीकार किए जाएंगे और केवल स्नान करने से ही वे अपने आप को आम जनता के समक्ष जाने के लिए योग्य समझेगा। दूरे वार्ययनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम उदरम भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्यम एवहि दाक्षम कुटुंब भरणम यशोर्थे धर्म सेवनम। धार्मिक पवित्र स्थलों को केवल दूरी पर स्थित जल माना जाएगा और अपनी सुंदरता बालों के सजावट पर निर्भर समझेंगे। अपने उदर या पेट को भरना जीवन का लक्ष्य माना जाएगा। जो बहुत अधिक बोलेगा या ऊंचे स्वर में बोलेगा उसे सत्य माना जाएगा, और जो भली भांति अपने कुटुंब का पालन कर सकेगा उसे निपुण माना जाएगा, एक्सपर्ट माना जाएगा। और धर्म का पालन जो किया भी जाए तो केवल यश कीर्ति या अपने मान और सम्मान के लिए करेंगे। एवं प्रजाभिर दुष्टाभिर आकीर्णे क्षितिमंडले ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बली भवितान रिपहा। जैसे ही पृथ्वी पर इस प्रकार की भ्रष्ट आबादी बढ़ने लगेगी, उनमें से जो भी सामाजिक दर्जा सबसे अधिक बल दर्शाए उसी को राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। दस्यु प्रायेषु राजसु अधिकांश राजागण चोर बन जाएंगे। प्रजा ही लुब्धेय राजन्येर निर्घृणेर दस्यु धर्म भी ही आच्छिन्न दार द्रविना यास्यन्ति गिरिकाननम। ऐसे लालची और दयाहीन राजनीतिक नेतागण लोगों की संपत्तियां और पत्नियों को भी चुरा लेंगे। उनमें और सामान्य चोर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और उनसे दूर होने के लिए नागरिक लोग वन और पर्वतों की ओर भाग जाएंगे। शाक मूलामीश शौद्र फल पुष्पास्ति भोजनः अनावृष्ट्या विनंक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़ित। पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने के कारण और अत्यधिक कर या टैक्स के कारण लोग पत्तियां मूल दाने और फूल खाने लगेंगे, और जब सूखा पड़ेगा तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। कलयुग के इस दृष्टांत को सुनने से हम ये जान सकते हैं कि इसी पृथ्वी के कई स्थानों में ये सब होना आरंभ हो चुका है। और जो हम कहे कि हम इसके विषय में क्या कर सकते हैं, कलयुग को रोकने की तो हमारे पास कोई शक्ति है ही नहीं। और ये बात सत्य है, जिस प्रकार से जब ठंड की ऋतु आती है तो हम ठंड के सीजन को आते हुए रोक नहीं सकते, परंतु अपने आप ठंड से सुरक्षित रहने के लिए हम कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इस कलयुग को आते हुए हम रोक नहीं सकते, परंतु अपने लिए हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि ये कलि का प्रभाव हम पर न पड़े अथवा सहन करने के योग्य हो। आज ये अनुचित संबंधों का विषय हम क्यों लेकर आए, क्योंकि जो हम सावधान न रहे तो हमारे संबंधों के माध्यम से हमें अपार कष्ट प्राप्त हो सकता है। शास्त्रिक ग्रंथ हमें सुख के मार्ग पर ले जाने के लिए है, ये हमारे हित के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र की विधि को न अपनाता है और जो जी में आए मन में आए वही करता है, उसे न तो सिद्धि न ही सुख और न परम गति की प्राप्ति होती है। जो हम शास्त्रिक ग्रंथों के अनुसार जीवन जिए तो हम कीचड़ में भी सुखमय जीवन जीने के अधिकारी बन जाते हैं। हमारे संबंध सुधरेंगे और हम मन की शुद्धता और शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें केवल इस तुच्छ निजी जीवन के क्षणिक सुख के पीछे ही प्रयास नहीं करते रहना चाहिए। इसी कारण भागवत कहता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हिये को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजन, कलयुग दोषों से भरपूर है, परंतु इस युग में एक बहुत ही महान गुण है, और वो ये है कि केवल भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने से एक व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है और भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकता है। इसी कारण आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हर एक धर्म में भगवान के नाम अलग प्रकार से पुकारे जाते हैं। परंतु इस कलयुग में यह रेकमेंड किया गया है कि हमें भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करना चाहिए। हमारे इस्कॉन संस्था में हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान के कई नाम हो सकते हैं, जो कोई भी नाम आपकी पसंद का हो आप उसका उच्चारण करें, अवश्य ही इस कलयुग के असर से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, यही शास्त्रिक ग्रंथों का कहना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, हरे कृष्ण। और अब हम आपकी सेवा में कृष्ण और रुक्मिणी का कैसे विवाह हुआ वो भागवत पुराण में से विवरण रेडियो प्ले के रूप में प्रस्तुत करते हैं, हरे कृष्ण।
1: My name is Krishna and I'm the supreme personality of Godhead, the Lord and source of all creation. About 5,000 years ago I lived in India. Though I looked like and played the part of a human being, I was not at all human, for my body and life were, and always are, composed of absolute knowledge, bliss and eternality, and are never affected by the material or illusory forces of this world. The present story begins when I was a young man living in the city of Dwarka. The king of Vidarbha, Bhishmak, was a very qualified and devoted prince. He had 5 sons and only 1 daughter. The brothers had 1 young sister, Rukmini. She was beautiful and chaste. Many saintly persons and sages like Narad Muni used to visit the palace of King Bhishmak. Naturally, Rukmini had a chance to talk with them, and in this way she obtained information about me. Simply by hearing about me, she desired to surrender herself at my feet and become my wife. I had also heard of Rukmini. She was the reservoir of all transcendental qualities, intelligence, liberal-mindedness, exquisite beauty, and righteous behavior. I therefore decided that she was fit to be my wife. All of the relatives of King Bhishmak decided that Rukmini should be given in marriage to me. But her elder brother Rukmi, despite the desire of the others, arranged for her marriage with Shishupal, my determined enemy. When the black-eyed, beautiful Rukmini heard of the settlement, she immediately became very morose. However, being a king's daughter, she understood political diplomacy. After some deliberation, she decided to send a message to me. So she selected a qualified Brahmin as her messenger, one who was always truthful and a devotee of Lord Vishnu. Without delay, she sent the Brahmin to Dwarka. Reaching the gate of Dwarka, the doorkeeper led him to the place where I was sitting on a golden throne. Of course, I could understand that the Brahmin had come with a confidential message. Therefore, I said, "If you have no objection, I give you liberty to speak about your mission." Thus, the Brahmin got out the letter Rukmini had written to me and said,
2: "These are the words of Princess Rukmini. My dear Krishna, O infallible and most beautiful one, any human being who happens to hear about your transcendental form and pastimes immediately absorbs through his ears your name, fame, and qualities. Thus all his material pangs subside, and he fixes your form in his heart.
1: Through such transcendental love for you, he always sees you within himself. And by this process, all his desires are fulfilled. Similarly, I have heard of your transcendental qualities. I may be shameless in expressing myself directly, but you have captivated me and taken my heart. You may suspect that I am an unmarried young girl and may doubt my steadiness of character. But my dear Mukunda, you are the supreme lion among human beings, the supreme person among persons. Any girl, though not yet having left her home, or even any woman of the highest chastity, would desire to marry you, being captivated by your unprecedented character, knowledge, opulence, and position. I know that you are the husband of the goddess of fortune and are very kind toward your devotees. Therefore, I have decided to become your eternal maidservant. My dear Lord, I dedicate my life and soul unto your lotus feet. I have selected your lordship as my husband, and I therefore request you to accept me as your wife. You are the supreme powerful, O lotus-eyed one. Now I belong to you. If that which is enjoyable for the lion to eat is taken away by the jackal, it will be a ludicrous affair. Therefore, I request you to immediately take care of me before I am taken away by Shishupal. My dear Lord, in my previous life, I may have done public welfare work like digging wells and growing trees, or pious activities such as performing ritualistic ceremonies and sacrifices, and serving superiors like the spiritual master, Brahmins and Vaishnavas. By these activities, perhaps I have pleased the Supreme Personality of Godhead, Narayana.
2: By these activities, perhaps I have pleased the Supreme Personality of Godhead, Narayana. If this be so, then I wish that you, Lord Krishna, the brother of Lord Balaram, please come here and catch hold of my hand so that I not be touched by Shishupal.

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, वालेकुम अस्सलाम और एक बहुत ही प्यारी से गुड मॉर्निंग। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जॉनी जैन। सो दोस्तों, वेडनेसडे है, यानी वेडनेसडे मॉर्निंग है और वीक का आधा सफर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मंडे का हैंगओवर जो है वो ओवर हो चुका है, ट्यूजडे की टेंशन गई है और अब है वेडनेसडे। जी हाँ, और वेडनेसडे कह रहा है चलो जी अब थोड़ा सा स्माइल भी कर लो। सो दोस्तों, प्रोग्राम जाने का सफर शुरू हो चुका है और आज का दिन एक फ्रेश पेज होने वाला है। जो कल नहीं हुआ जरूरी नहीं है कि वो आज भी ना हो। तो दोस्तों, आप बस चाय रेडी रखिए, कॉफी रेडी रखिए, कार में है, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि ब्रिस्वानी के साथ मॉर्निंग अब ऑफिशियली ऑन हो चुका है। आइए सुनते हैं ये ट्रैक, करते हैं शुरुआत इस प्रोग्राम के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिस्वानी में, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर, और आशा करती हूँ जी ये सफर आप सभी का बेहतरीन चले गुजरे। जी हाँ, तो दोस्तों ये गीत अभी आप सभी ने सुना है और होपफुली जी आपको ये प्यारा सा गीत बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके दिन आपके मॉर्निंग को फ्रेश कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों फ्रेशनेस बहुत जरूरी है, तभी हम अपने दिमाग से आगे की चीजों को हम भाई सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसी के साथ एक और ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद जानेंगे क्या अपडेट्स है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, इंडिया, बहुत कुछ लोकल अपडेट्स भी आज लेकर आई हूँ, आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कैश रेट को 4.60% तक बढ़ा दिया है, जो कि 2011 के बाद हाईएस्ट लेवल है और ये 2026 में आरबीए की फोर्थ रेट हाइक है। और आरबीए ने इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न का जिक्र भी किया है। तो दोस्तों, होम ओनर्स और बोरोवर्स जो है उनके लिए ये ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आज मॉर्निंग कॉफी के साथ दोस्तों एक बार फिर से अपने फाइनेंसिस को भी चेक कर लेना। कॉफी का बिल तो कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इंटरेस्ट रेट को नहीं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो दोस्तों आइए अब इसी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी में जानते हैं ब्रिस्बेन की लोकल अपडेट्स। ब्रिस्बेन में भी पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ी अपडेट्स जो है वो सामने आ रही है। एबीसी ब्रिस्बेन के अकॉर्डिंग वुडरिज में एक टू स्टोरी हाउस फायर के बाद पुलिस ने क्राइम सीन डिक्लेयर किया है और तीन लोग जो है सेफली स्केप करने में एबल रहे। और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी वही न्यूज है, सॉक्रूज का जो ब्रिस्बेन कनेक्शन है वो भी इंटरेस्टिंग है भाई। ब्राजील के अगेंस्ट अपकमिंग क्लैश को लेकर टीम प्रिपरेशंस की बात हो रही है। सो ब्रिस्बेन मॉर्निंग ड्राइव इन अ केयरफुली ड्राइव कीजिएगा, पेशेंस रखिए और सीट बेल्ट जरूर लगाइए। आइए शिक्षा सुनते हैं नेक्स्ट।

हाँ जी, तो आइए फिर अब थोड़ा सा न्यूज से ब्रेक लेते हैं और एक ऐसा गाना जो मॉर्निंग को इंस्टेंटली थोड़ा सा कलरफुल बना ही देता है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ना वेडनेसडे मॉर्निंग को भी बस यही रिमाइंडर चाहिए होता है, लाइफ परफेक्ट होने का वेट मत करो, लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो। तो आइए आप और मैं फिर से जिए इस तमन्ना के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वैसे दोस्तों आज का एक प्यारा सा विचार है, हर दिन को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीसफुली नॉर्मल रहना भी एक अचीवमेंट है। तो दोस्तों अगर आप हेल्दी है ना, घर में अपने लोग हैं, सुबह की चाय मिल रही है और आपके पास एक और दिन है, तो बिलीव मी आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो इसीलिए और कुछ तलाशने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, इसी को आप संभाल कर रखें। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए इंडिया से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानते हैं। ओडिशा के मेहंदी सिस्टम जो है उसमें हैवी रेनफॉल के बाद फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप होने की रिपोर्ट है। हीराकुड धाम के मल्टीपल गेट्स ओपन किए गए हैं और वाटर डिस्चार्ज भी बढ़ा है। एजुकेशन से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से करंट क्लास 6 स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क से एक्सेम्पशन देने पर कंसीडर करने को कहा है। और स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि नीरू ढांडा ने भी वुमेन्स ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन में इंडिया का 5th गोल्ड बताया गया है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वैसे दोस्तों कुछ भी कहो, 90s और 2000s के जो सॉन्ग्स है ना, उनकी एक अलग ही बात होती है। ना रील्स का प्रेशर होता था, ना ट्रेंडिंग ऑडियोज का प्रेशर होता था, बस एक कैसेट लेनी है या सीडी लेनी है और एक अपना फेवरेट सॉन्ग चला देना है और दिल से कनेक्शन होता है। आज सुबह एक एवरग्रीन क्लासिक सुनते हैं दोस्तों, आपको सुनाऊंगी मैं एक बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं कि वक्त भी हो चला है आप सभी से टाटा बाय बाय कहने का। और दोस्तों इसी स्माइल के साथ आज की मॉर्निंग को आगे लेकर जाना भी जरूरी है। आपका मूड पूरे दिन का रिमोट कंट्रोल नहीं होता दोस्तों, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उस रिमोट को किसके हाथ में देंगे। तो मैं थी आपकी दोस्त और होस्ट आरजी छानी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। सो ड्राइव सेफली ब्रिस्बेन, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल भी रखिए और कल फिर मिलेंगे एक और फ्रेश मॉर्निंग के साथ। तब तक लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। आइए शिक्षा सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक और दीजिए मुझे इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।

0: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. जो होना था वो हो गया. अब आप मेरे साथ हैं. अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती.
0: तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे?
1: अभी तक तो कभी नहीं, और आगे भी अगर होऊंगा तो सिर्फ एक ही बार सीरियस होऊंगा.
0: कब?
1: जब किसी से प्यार हो जाएगा.
0: कैसी लड़की चाहिए तुम्हें?
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: Oh, sweet.
1: अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है. मुझे तुमसे प्यार हो गया है. आई लव यू सिमरन.
0: मैं एक बार फिर ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती.
1: पर मैं चाहता हूं ये ट्रेन बार बार छूटे.
0: क्या?
1: कुछ नहीं. राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। हम आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पत्रकार से राजा बने एडवर्ड रुकीड़ी, ट्रूडो साम्राज्य में उत्तराधिकार विवाद के बीच हुआ राज्याभिषेक। युगांडा में पत्रकार और राजकुमार एडवर्ड रुकीड़ी नियाबोंगो को पारंपरिक रूप से ट्रूडो साम्राज्य का नया राजा चुना गया है। इसको लेकर राज्य में विवाद की भी खबरें सामने आई। इन दिनों राज्य में बेबी ओयो की भी चर्चा चल रही है। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर एंड्रयू बेली ने एक साल से ज्यादा समय तक पद संभालने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ समय बिताने के लिए मिसौरी लौटेंगे। बेली ने राष्ट्रपति ट्रंप, टॉड ब्लॉश और काश पटेल को धन्यवाद दिया और पटेल के नेतृत्व पर भरोसा जताया। कक्षा तक पहली बार भरी उड़ान, स्टारलिंक के उपग्रह पहुंचाए, सुरक्षा के कारण अवधि छोटी हो गई। स्पेस एक्स के स्टारशिप ने अपनी पहली कक्षीय उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्टारलिंक के उन्नत उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। सुरक्षा कारणों से उड़ान को निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। नीरव मोदी के करीबी संदीप मिस्त्री को यूएई से लाया गया भारत। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई ने नीरव मोदी के सहयोगी संदीप मिस्त्री को यूएई से प्रत्यर्पण के बाद मुंबई में गिरफ्तार किया है। मिस्त्री को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि वो नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के साथ कथित आपराधिक साजिश में शामिल था। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए तीसरी बार आएगा नोटिस। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्तावित नोटिस को आप और डीएमके के समर्थन मिलने की खबर है। ऐसी स्थिति में विपक्ष संसद में तीसरी बार ये प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। 10वें दिन एशियन गेम्स में भारत का बेहतरीन रहा प्रदर्शन। एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शूटिंग और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। नीरू धांडा ने महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि भारतीय महिला 400 मीटर रिले टीम ने गोल्ड अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में सिल्वर जीतकर एक ही एशियाड में अपना तीसरा व्यक्तिगत पदक हासिल किया। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे, जबकि नरेंद्र ने कांस्य पदक पक्का किया। भारत ने महिला ट्रैप टीम में रजत और एथलेटिक्स में कई अन्य पदक भी जीते। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
10: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
9: ऐसा क्या खास है वहाँ?
10: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
9: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
10: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
11: सासों की माला पे सिमरू मैं.
12: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
13: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
12: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.
9: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
10: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
9: ऐसा क्या खास है वहाँ?
10: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
9: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
10: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
14: I don't know what's happening this morning.
15: No, as I was reading that, the text was doing a dance on me, going here, there, everywhere, up and down, left, right, you know.
14: Wow.
15: What was the
14: last thing you had to drink? It couldn't have been the coffee.
15: The coffee I drank, you made. Did you put anything in the coffee?
14: No.
15: Well, the coffee.
14: Just the same amount of love and coffee and sugar.
15: Yeah.
14: And milk.
15: Okay, I don't know. Maybe you put too much love in coffee.
14: Probably you had you dazzling away. Okay, sorry. It's 7:38. Today is the 30th of September. So happy birthday if you're celebrating your birthday today. And a happy anniversary
15: birthday
14: if you're celebrating your anniversary. Yeah. Any kind of anniversary.
15: Yeah. As long as you're happy.
14: As long as you're happy.
15: Yeah. Happy anniversary.
14: And we want you to be happy. Mm-hmm. Okay. So enjoy your day.

0: और इस गीत के बाद कई और गीत आने लगे हैं ना। अभी देखो दो गाना और आ गया। देखिए दोस्तों, हम कभी पहले से बहुत ज्यादा प्ले नहीं करते, और जैसे जैसे प्रोग्राम हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ हम गीत भी फिर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और ओके राइट, दो गाना है, मैं सोचता हूँ मैं क्या बजाऊँ। ये बजा दूँ?
1: I have no clue what you're playing.
0: Okay, let me play this song and maybe you might like this. Then I got two other songs to play. Okay?
1: Sure.
0: All right. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुने एक गीत को। इस गीत को गाए हैं आशा भोसले और मना डे राज कपूर के लिए, फिल्म सीरीज 420 का गाना है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। Okay, here we go.

0: Those are good days.
1: What a beautiful song. बहुत प्यारा गाना और लोग इसको बहुत पसंद किए थे दोस्तों, है कि नहीं?
2: वेरी पॉपुलर,
1: वेरी पॉपुलर सॉन्ग, और बच्चे बच्चे भी गाते थे. There was beatiness, is there something in it, you know?
2: Yes.
1: Yeah, yeah. और जो गाना मैंने खोज रहा था, जो आया था दिमाग में, मैंने सोचा जाने से पहले इसको फिर से,
2: जाने से पहले
1: कभी कभी याद में.
2: Hey, we got 1 hour to go.
1: तेरे जाग जाग
2: you mean before it goes out of your mind?
1: In my mind, see.
2: It's Wednesday, it's Wednesday.
1: बदलते रहे. नहीं, वो भी नहीं बजाएंगे. I'm just telling you that song came. चलो, ये गाना था दोस्तों.
2: Keep it for tomorrow, eh?

दूसरे वाली।

0: Okay, you are playing a Goom song.
1: झूम बराबर
0: जी झूम। चलिए अगला जो गीत है दोस्तों सुनते हैं, और इस समय 24 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और ये गाना
1: slow start to the morning, eh? We now getting into the Wednesday mood.

0: जी हाँ, धूम मचा ले धूम। और अभी तो हम धूम मचाएंगे कुछ देर तक, फिर आधा घंटा और है दोस्तों, फिर उसके बाद आप के साथ हो जाएंगे, ठीक है?
1: Yes.
0: और फिर 11 बजे आप हो जाएंगे संदेश के साथ, पंजाबी प्रोग्राम रहेगा। 3 बजे से निविया के साथ, तो जरूर सुनिएगा दोस्तों। कल थर्सडे इज इट?
1: ऑलरेडी यस।
0: इट्स ऑलरेडी थर्सडे
1: टुमारो? या ऑफ कोर्स।
0: हाउ कम?
1: इट जस्ट हैपेंस।

और आप सुन रहे हैं दोस्तों रेडियो बिजवानी, और इस समय 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में। एक रिक्वेस्ट है हमारे पास, चलो सुनते हैं कौन सा गाना है। ओके, हियर वी गो।

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर?
1: ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

सुबह ही हो गई है एक और सुबह, और इस सुबह के आगाज के साथ आ गई है सताक्षी एक बार फिर से आपको कहने गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि जिंदगी एक नया पन्ना लिख रही है और इस पन्ने में बहुत कुछ साथ होगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा और इस नए दिन की शुरुआत आप भी कई खूबसूरत बातों और जज्बातों के साथ कर रहे होंगे। तो बस आपके इसी दिन को और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ और इस दिन की शुरुआत चलिए करते हैं मिलकर साथ में इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। और जिनके लिए आज का दिन खास है, जो आज बहुत रैप्चरिक मूड में है और जिनको मस्ती सूझ रही है, उनके लिए जरा आज के दिन की विशेस दे दी जाए। तो भाई, आज आप अगर इसलिए खुश हैं, आज आप इसलिए मस्त हैं क्योंकि आज आपका बर्थडे है। सो जी हाँ, खुश होना बनता है, इस दिन को सेलिब्रेट करना बनता है और इस दिन की खुशियां हम भी आपके साथ बांटेंगे आपको ढेर सारी विशेस देकर। देखिए, हम यहाँ से आपको सिर्फ गिफ्ट के तौर पर विश कर सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं कि आपकी जिंदगी की पूरी जर्नी बड़ी ही लाजवाब हो। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और बस हम यही चाहते हैं यार कि आपका रिश्ता जो है वो जितना मजबूत आज है उतना ही हमेशा बना रहे। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आइए मिलकर सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, मुझे एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

तो भाई चलिए आज इट हैपेंस में बात करते हैं प्यार के ऑक्सीजन की। क्या है प्यार का ऑक्सीजन? प्यार का ऑक्सीजन एक्चुअली है कम्युनिकेशन। जी हाँ, अब आप सोचिए ना कि प्यार क्या सिर्फ आई लव यू बोलने से चलता है? जी नहीं, प्यार चलता है जब आप कहते हैं आई अंडरस्टैंड यू, और इस समझ की शुरुआत ही होती है कम्युनिकेशन के साथ। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जरूरत होती है कम्युनिकेशन। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो शुरुआत में बातें खुद ब खुद होती हैं। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात को गुड नाइट, हर छोटी बात पर मिस यू। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये बातें कम होने लगती हैं और वहीं से शुरू होता है गैप, एक इमोशनल डिस्टेंस। कई बार लोग सोचते हैं इट्स ओके, आई डोंट नीड टू टॉक डेली, लेकिन सच ये है कि अगर बात नहीं हो रही है तो कनेक्शन जरूर कमजोर हो रहा है। और इसीलिए तो मैंने कहा कम्युनिकेशन इज ऑक्सीजन ऑफ लव। बिना बात के रिलेशनशिप सफोकेट करने लगता है, तो इसलिए कम्युनिकेट करते रहिए और अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाते रहिए। फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

हैप्पीनेस हो, मॉर्निंग हो और हम सेल्फ लव की अगर बात ना करें तो शो जरा अधूरा लगेगा। हमारी सबसे खूबसूरत चीज है सेल्फ लव, लेकिन यही वो भी चीज है जिसे कोई भी इंसान सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। वो दूसरों को समझने में लगा रहता है, दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, दूसरों के लिए खुद को बदलता रहता है, लेकिन खुद के लिए रुककर वो कभी नहीं सोचता। और जब एक इंसान खुद को ही समझना भूल जाता है तब उसकी सोच ही उसे चोट पहुंचाने लगती है। इसी वजह से सेल्फ लव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बन जाता बल्कि इनर हीलिंग का प्रोसेस बन जाता है। और इसी सेल्फ लव पर अभी आगे आपसे बात करूंगी। जरा एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एफएम पर।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੁਨ ਰਹੇ ਆਪ
2: ਸਤਾਕਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰੀਜੋ ਬ੍ਰਿਸਵਾਨੀ ਪਰ ਔਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਮੇ। ਆਈਏ ਬੜਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕੇ 3 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਟ੍ਰੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਨੋ ਕੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਓਰ।

कानों की हैट्रिक काल तीसरा और लास्ट ट्रैक हाजिर है, एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी 1701 FM।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू

हम अभी बात कर रहे थे आपसे सेल्फ लव की, कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वैसे सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और खुद के साथ खड़े रहना भी होता है। इसका मतलब है अपने फ्लॉज के साथ भी आप खुद को एक्सेप्ट कर पाए, अपनी मिस्टेक्स के साथ भी आप खुद को माफ कर पाए और अपनी वैल्यूज को दूसरों के बिहेवियर से डिफाइन ना करें। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग खुद से प्यार करना जानते ही नहीं है। वो दूसरों के वैलिडेशन ढूंढते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं और उसी में अपनी वैल्यू ढूंढते रहते हैं। यही आदत उन्हें अंदर से खाली कर देती है और यही सिचुएशन होती है एक्सटर्नल वैलिडेशन डिपेंडेंसी की। तो इसलिए इतनी सारी चीजों से आपको ना गुजरना पड़े, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन तक ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि खुद पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, खुद की एक्सटर्नल ब्यूटी पर नहीं, इंटरनल ब्यूटी पर। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

वेलकम बैक, मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ सिताक्षी का साथ चल रहा है आप ही के रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और यू नो, हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसका दिल किसी से कनेक्ट हो जाता है। कभी ये कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप होता है और कभी अचानक से हो जाता है। तो एक सिंपल कन्वर्सेशन से शुरू होने वाली बात कभी कभी एक डीप इमोशनल बॉन्ड बन जाती है। शुरू में सब कुछ सिंपल लगता है, आप किसी से बात करते हैं, उसकी प्रेजेंस अच्छी लगती है, उसके मैसेजेस का वेट करते हैं, आपकी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है वो बंदा, आपका दिन फिर धीरे धीरे उसके मैसेज से स्टार्ट होना शुरू होता है, आपका मूड उसके वर्ड से चेंज हो जाता है। अगर वो खुश हो तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर वो अपसेट हो तो आप भी अपसेट हो जाते हैं, आपको भी भारी और हैवी फील लगने लगता है। ये सब बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली कनेक्शन सीकर होते हैं, और इसीलिए आपके साथ भी ऐसा होता है। जब दिल किसी के साथ जुड़ जाता है तो इंसान उसकी फीलिंग्स के साथ भी जुड़ जाता है। इसी बात पर एक और ट्रैक सुनेंगे सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701।